अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास

listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है, जबरदस्त है।

0: देखो तो हम पास लेकिन सोचो कितनी दूरी है, कैसी ये मजबूरी है।
1: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: टेनमैन की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
3: इन एसोसिएशन विद
2: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

0: लो जी, कोई और बोले या ना बोले, हमने तो अपनी सुबह सुबह की शुरुआत जो है ये वो किसी के प्यार से देखो कर ली है। ये छोरी कशिश हाँ जी, मैं हूँ आपकी कसू संचो, आपके लिए लेकर जो है मैं आ चुकी हूँ बिंदास मॉर्निंग, जहाँ पर आपकी बेसिक बोरिंग मॉर्निंग को बिंदास बनाने का बीट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने इन नाजुक कंधों पर उठा लिया है। अब देखिए यार, आज की शुरुआत जो है वैसे तो मैंने बहुत एनर्जी में की थी, लेकिन जैसे जैसे मैं बात कर रही हूँ मुझे जो है नींद के झोंके आ रहे हैं, एंड आई एम श्योर आपके साथ भी ऐसा हो रहा होगा। सो बस आपको जो है थोड़ा और कम्फर्टिंग फील कराने के लिए, थोड़ा और एनर्जी में यू नो ऐसे डुबो देने के लिए अमेजिंग वाले गाने जो है वो हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उसके साथ बिंदास मॉर्निंग पे मैनिफेस्टेशन की भी देखो हम कमी नहीं होने देंगे। इसीलिए आपकी कसिश जो है आपके लिए लेकर आई मनी फॉर लूज माई ब्रदर वाला गाना, मीम से बनाया हुआ ये गाना है एक, और जरा वॉल्यूम बढ़ाकर इसे इंजॉय कीजिए आपकी कसिश के साथ, और बाकी बने रहिए बिंदास मॉर्निंग में। आज आपकी बेसिक मॉर्निंग को बिंदास में बनाए रहूंगी, मैं हूँ आपकी कसिश, स्टे ट्यून और आपकी कसिश के साथ कहते रहो जियो बिंदास।
1: पूरे देश को पगला दूंगा, अभी तो कुछ पेश किया है, सुनो। नाम या दाम, नाम
2: मनी फॉलोज माय

0: पूरे देश को।
1: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
2: Hi, this is Deepika Padukone.
3: Deepika Padukone.
2: Radio Olive 106.3.
4: I'm in number one. Radio Olive.
1: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian radio network.
5: सुनिए हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में
6: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
7: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
8: इन एसोसिएशन विद
7: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक विजिट bima.com.qa बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड TNC अप्लाई।

0: देखो गाइस, किसी के पागल वागल होने की जो है आप फिक्र ना करें, आप हंसिए मुस्कुराइए और खुश रहिए, क्योंकि ये आपकी खुशी का मामला है। हाँ जी, ये कूल सी छोरी आपकी कशिश जो है आ चुकी है लेकर आपके लिए बिंदास मॉर्निंग, जो आप आपकी बोरिंग बेसिक मॉर्निंग का जो है हम बिंदास बना रहे हैं। अब देखिए यार, 29 डिग्री सेल्सियस इस वक्त का टेम्परेचर हो रहा है, मतलब सुबह सुबह जो है मैं उठती नहीं हूँ जनरली, लेकिन आज मैं उठी तो मुझे लगा कि यार ठीक है, ठंडक जो है वो होगी मौसम में एंड मुझे ठंडक का एहसास होगा, लेकिन ये ठंडक जो है 29 डिग्री सेल्सियस ही है, क्योंकि आज का लोएस्ट टेम्परेचर ही 29 रहने वाला है। सो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं आया है, लेकिन आई एम हैप्पी दैट टेम्परेचर जो है वो 29 में पहुँच चुका है, 20s में आ गया है, अपने 30s में जो है इतने टाइम से चल रहा था। वैसे 39 डिग्री सेल्सियस जो है आज का हाईएस्ट टेम्परेचर रहने वाला है, सो ये भी ओके ही है, 40 में नहीं है, बस इसी बात की खुशी है। मैं ना कभी कभी ऐसे बिहेव करने लग जाती हूँ मौसम के साथ, जैसे मेरे मम्मी पापा मेरे मार्क्स के साथ करते थे स्कूल में, कि ठीक है फेल तो नहीं हुई ना, पास तो हो गई ना, इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट में तो अच्छे मार्क्स आ गए ना। बाकी जितने भी बच्चे इस वक्त स्कूल जा रहे हैं उन लोगों के लिए ऑल द बेस्ट। एंड बाकी थोड़ी सी देर में जो है हम ब्लैक बोर्ड स्टोरी वाला भी कॉन्टेस्ट करने वाले हैं, जहां पर आप लोगों के लिए सवाल में लेकर आऊंगी, लेकिन उससे पहले भी बहुत सारी बातचीत जो है वो हम करेंगे। आज का थॉट ऑफ डे जो है वो भी हम जानेंगे, आप लोगों के जो प्यारे प्यारे मैसेजेस हैं वो भी पढ़ेंगे। तो 3311063 पर मुझे हाय हेलो गुड मॉर्निंग कह दो यार, मेरी इस नींद भरी मॉर्निंग को जो है थोड़ा सा नॉर्मल बना दो, मुझे थोड़ी आवाज़ में नींद सुन पा रहे होगी मेरी। सो जल्दी से फोन उठाइए 3311063 पर मुझे मैसेज कर दीजिए। बाकी कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर आ रहा है रेडियो सेट्स पर, जरा वॉल्यूम बढ़ाकर डूबा डूबा गाना जो है इंजॉय कीजिए और कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है, कूल सॉन्ग।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: फेस्टिविटीज की प्लानिंग इट्स ऑलवेज क्वाइट ओवरवेलमिंग, बट व्हेन इट कम्स टू प्लानिंग योर ज्वेलरी परचेसेस, मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स काफी है। अब सिर्फ 25% पे करें एंड लॉक इन योर गोल्ड रेट 8 नवंबर तक। देन इफ द प्राइस इंक्रीजेस एट द टाइम ऑफ परचेस, आप पा सकते हैं द बुक्ड रेट, और अगर गोल्ड प्राइस ड्रॉप होती है यू गेट द लोअर रेट। है ना इनफ रीजंस टू स्टार्ट द सेलिब्रेशंस ऑलरेडी? तो आज ही अपना प्राइस लॉक्ड गोल्ड सिक्योर्ड कीजिए विद मलबार गोल्ड and diamonds.
2: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning.
3: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
4: इन एसोसिएशन विद
3: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

देखो नहीं तो एक बार सुनी लो यार मेरी तरफ, जरा ध्यान दे के मुझे सुन लो, क्योंकि मैं हूँ आपकी कशिश और आपके लिए ही तो आई हूँ इतनी सुबह सुबह उठकर मेहनत करके। मेरी मम्मी इस वक्त जो है सुन रही होंगी मुझे, वो ये सोच रही होंगी कि हमने इसको इतनी बार उठाया, ये तो उठी नहीं, अपनी ऑडियंस के लिए पहली बार में उठ जाती है। हाँ जी, मैं हूँ आपकी कशिश, शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ बिंदास मॉर्निंग, जो आपकी बोरिंग बेसिक मॉर्निंग को जो है बिंदास बनाने का बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा लिया है। अब देखिए यार, हम ये बात करने वाले हैं कि आखिर किस किस ने हमें सुबह सुबह गुड मॉर्निंग विश किया है, क्योंकि जिस तरीके से मेरे पापा जो है वो बुरा मान जाते हैं कि तुमने हमारा गुड मॉर्निंग मैसेज नहीं देखा, वैसे मैं भी बुरा मान सकती हूँ कि आपने मुझे गुड मॉर्निंग मैसेज नहीं किया। वैसे जुल्फी जी जो है बींग द क्यूटी, उन्होंने सबसे पहले हमें गुड मॉर्निंग वाला एक कोट भेज दिया है कि एवरीथिंग इन लाइफ हैज टू साइड्स, लुक एट द ब्राइटर एंड द हैप्पियर साइड। यस एग्जैक्टली, इसीलिए मैं भी ब्राइटर और हैप्पियर साइड जो है वो देख के सुबह सुबह उठ जाती हूँ कि सुबह सुबह उठूंगी फिर जो है आराम से सारा जो टाइम टेबल है वो बन जाएगा, क्योंकि मैं उठती ही 9 बजे हूँ, ऑफिस जो है वो 9:30 बजे से शुरू होता है एंड फिर भाग भाग के आती हूँ, क्योंकि 10 बजे से आपको लाइफ मास्टर शो में इंटरटेन करना होता था। लेकिन आज बिंदास मॉर्निंग करने के लिए मैं एकदम टाइम से उठ गई, अपनी फेवरेट टॉप निकाल के मैंने पहन लिया है ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन जो है वो बना रहे, इस पर भी बात करेंगे। वैसे मुझे जो है शशिकांत पाटिल जी, कितने दिनों बाद आपका मैसेज मैं जो है वो सुन देख रही हूँ, एंड गुड मॉर्निंग वाली एक फोटो इन्होंने भेजी है एंड उस पर लिखा हुआ है विजडम इज नोइंग व्हाट टू डू नेक्स्ट एंड वर्च्यू इज डूइंग इट। यस, सो विजडम हम रखेंगे बिल्कुल, आपको जो है आगे क्या करना है वो बताएंगे, एंड वर्च्यू मतलब मैं जो बोलूंगी वो मैं करके दिखाती हूँ। यार ये तो एकदम सलमान खान जी वाला कोट हो गया ना, कि मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ, जो मैं नहीं बोलता हूँ मैं डेफिनेटली करता हूँ। बाकी अबरार जी जो है उन्होंने भी हमें भेजा है गुड मॉर्निंग विद चिड़िया, थैंक यू सो मच अबरार जी, एंड आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप सबसे मॉर्निंग में मिलके जो है थोड़ा और ज़्यादा एक्स्ट्रा मज़ा आता है, क्योंकि जब मैं और सुदेव मॉर्निंग शो में साथ में आया करते थे ना तो बहुत फन करते थे, बहुत मस्ती करते थे, एंड वो मैं काफ़ी मिस करती हूँ। सो अगर आप लोग भी हमारी वो मस्ती वो फन जो है वो मिस करते हैं तो मैसेज कर दीजिए, ताकि हम जल्दी से बोलेंगे सुदेव मैं और आप वापस मॉर्निंग में साथ में जो है लोगों को फन कराएंगे। फिलहाल इश्क वाला लव गाना जो आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, जरा वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय कीजिए, और सुबह सुबह ना गर्म पानी पीना चाहिए, तो मैं भी जाती हूँ गर्म पानी फटाक से पी के आती हूँ, आप जो है ये गाने इंजॉय करते रहिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास, गुड मॉर्निंग।

0: Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
1: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning.
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें. विजिट योर नियरेस्ट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
1: इन एसोसिएशन विद
2: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे. स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक. विजिट bima.com.qa. बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड. TNC अप्लाई.

0: कुमार।
1: यस जी अक्षय कुमार जी का ये गाना जो है आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो ऑल ओवर। मैं हूँ आपकी कशिश और शो आपके लिए बिंदास मॉर्निंग लेकर आ गई हूँ।
2: छोरी

0: हाँ वो कूल है ये छोरी, बोला उसने, एंड आपसे कूल मिस हो गया होगा. देखो कूल तो मैं हूँ, एंड मुझे जो है काफ़ी कूल कूल फैक्ट जो है वो सोशल मीडिया से पढ़ने में भी काफ़ी मज़ा आता है. आई नो काफ़ी सारे बच्चे जो है वो इस वक्त जा रहे होंगे अपने स्कूल, और ये वाली बात मुझे अभी उनको नहीं बतानी चाहिए, लेकिन मैं तो बताऊँगी कि अगर आप वीकेंड्स पे थोड़ा एक्स्ट्रा सोते हैं, यानी आप थोड़ी और नींद लेते हैं, तो आपकी को जो है हेल्थ जो है काफ़ी बढ़िया हो जाती है आपकी, एंड आपको हार्ट डिजीजेस से जो है बचा जो है जा सकता है इससे, एंड मुझे ऐसा लगता है 20% जो है रिड्यूस हो जाता है डिप्रेशन भी. देखो यार, अब नींद जो है वो अच्छे से होगी तो डिप्रेशन तो दूर होगा ही ना. सो अगर आप वीकेंड्स पे थोड़ा एक्स्ट्रा सोते हैं, यानी वीकेंड्स की बात नहीं है, हफ्ते में अगर आप किसी भी एक दिन थोड़ा एक्स्ट्रा सोते हैं, अपनी नींद जो है थोड़ी एक्स्ट्रा पूरी करते हैं, तो आपका जो है हार्ट डिजीज का जो खतरा है, जो रिस्क है, वो कम हो जाता है, एंड 20% तक आपका जो डिप्रेशन है वो भी रिड्यूस होता है. अब देखो यार, ये सिर्फ इस बात की बात नहीं है कि यार वीकेंड पे एक्स्ट्रा सोना चाहिए, कि अगर मम्मी बोलती है कि यार 7 बजे उठ जाओ तो मैं तो 10 बजे ही उठूंगा, या तो मैं तो 12 बजे ही उठूंगा, ऐसा कुछ नहीं है. ज़रूरी नहीं है कि आप 12 बजे तक सोएं या 11 बजे तक सोएं. नींद जो है वो थोड़ा एक्स्ट्रा नींद लेना, यानी अगर आप 5 घंटे की नींद ले रहे हैं जो कि अनहेल्दी है, 6 या 7 घंटे की नींद ले रहे हैं, तो 1 घंटा एक्स्ट्रा सो जाएं, दैट विल बी बेटर. और जितने लोग जो है 2-2 घंटे की नींद पे सर्वाइव करते हैं और फिर फ्लेक्स करते हैं ना, मेरा भाई तो सिर्फ 2 घंटे सोकर आया है, सिर्फ 3 घंटे ही नींद पे सर्वाइव कर रहा हूँ, ये कोई जो है बहुत अच्छी बात नहीं है. आपको जो है ना इसके असर बाद में देखने को मिलेंगे. वैसे मम्मी नहीं बनना चाहती मैं, आपको ऐसे डांटना नहीं चाहती हूँ मैं, लेकिन कोई बात नहीं, बाद में पर्सनल पे आइए, मुझे बताइए कि आप 2 घंटे की नींद लेके आते हैं, वहाँ डांटूंगी मैं आपको. फिलहाल ऑल द फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आर आर आपकी रेडियो सेट्स पर, इसे ज़रा वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ, और थोड़ी सी देर में ब्लैकबोर्ड स्टोरी वाला सवाल जो है वो मैं आप लोगों से पूछने वाली हूँ. सो ज़रा वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय करो आपकी कशिश के साथ, और कहते रहो जियो बिंदास.
1: रेडियो

0: या टेनमैन की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
1: इन एसोसिएशन विद
2: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

0: ये जो हमारी दीवानी से बनी का बैकग्राउंड म्यूजिक जो है इलाही आपने एंजॉय किया मैं मेरे साथ आपकी कशिश के साथ
1: ये छोरी कशिश।
0: अब देखिए यार जो भी एकदम सेल्फ मेड इंसान होता है ना उसके बैकग्राउंड में हमेशा इलाही गाना या ऐसा ही कोई मोटिवेशनल गाना जो है वो चल रहा होता है। एंड आई नो आप भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं अपनी लाइफ में अपनी करियर में अपनी फैमिली के साथ, बस इसीलिए आपके लिए भी गाड़ी चलाते हुए या नॉर्मली अपने घर के काम करते हुए या रैंडमली अपनी लाइफ जीते हुए बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक तो चाहिए और बस उसका इंतजाम मैंने कर रखा है। ऐसे ही अच्छे वाले गाने आपको मैं सुनाती रहूंगी। वैसे जो है अभी जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनकी जीके चेक करने के लिए ब्लैकबोर्ड स्टोरी में लेकर आ गई हूँ जहाँ पर आज का सवाल बहुत बहुत बहुत ही आसान होने वाला है। मतलब अगर आप कतर में रहते हो तो आपको इतना तो देखो पता ही है। सो बेसिकली आज मैं आपसे जो है इतना आसान सवाल पूछने वाली हूँ कि जिसका जवाब आप एकदम फटाफट मुझे दे देंगे। सो 3311063 वाला चैट बॉक्स जो है वो खोल के रखिए और आंसर लिख के फटाक से मुझे सेंड कर दीजिए। सवाल देखिए बड़ा ही सिंपल सा है, आप जो है मुझे मैसेज करके ये बताइए कि हमारे कतर का नेशनल बर्ड जो है वो कौन सा है। 3311063 पर जो है बताइए मुझे कि हमारे कतर का जो है नेशनल बर्ड कौन सा है। 3311063 इज द नंबर। नंबर बार बार इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आप सब कहते हैं कि यार कशिश आप नंबर जो है वो बहुत तेज बोलती हैं एंड या तो मतलब इतना जो है ऐसे बोलती हैं कि हमें समझ ही नहीं आता। सो 3311063 अभी तक तो याद हो जाना चाहिए। वैसे जल्दी से मुझे जो है आंसर दे दीजिए एंड सुदेव के स्टाइल में ही कहना चाहूंगी, जैसे सुदेव और मैं जब मॉर्निंग शो किया करते थे जब बिंदास मॉर्निंग किया करते थे तो सुदेव कहते थे कि देखते हैं कि आप पांचवीं छठी सातवीं आठवीं नवीं दसवीं ग्यारहवीं बारहवीं और कशिश से कितने ज्यादा स्मार्ट है। सो बताइए मुझे कि हमारी नेशनल बर्ड जो है वो कतर की कौन सी है। फिलहाल एक अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, आंसर दे दीजिए 3311063 पर और ये गाना जो है आपकी कशिश के साथ। एंजॉय कीजिए वॉल्यूम बढ़ाकर स्टेडियम जियो दस।

0: बिंदास सुनिए हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में बिंदास
1: मॉर्निंग मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
3: इन एसोसिएशन विद
2: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक विजिट bima.com.qa बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड टीएनसी अप्लाई

0: देखिए हार्ट थ्रोप की बात हो और आपकी कशिश ना आए, ऐसा हो सकता है क्या?
1: ये छोरी कशिश
0: हाँ जी, आपकी एक खुल सी छोरी आपकी कसूस जो है आ चुकी है लेकर आपके लिए बिंदास मॉर्निंग, जहां पर आपकी बोरिंग बेसिक मॉर्निंग को जो है बिंदास बनाने के रिस्पॉन्सिबिलिटी बीड़ा जो है वो मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा लिया है। अब देखिए यार, आपसे एक बड़ा ही आसान सा सवाल मैंने किया था कि ये बताइए मुझे कि हमारे जो कतर का की नेशनल बर्ड जो है वो क्या है, मतलब की या काम है, मैंने ये डिवाइड करना चाहती है, नेशनल बर्ड का नाम बता दीजिए बस आप मुझे। एंड बहुत सारे लोगों ने हमें सही सही मैसेज किया है एंड कुछ लोगों ने गलत गलत मैसेज भी किया है। सो आइए अभी तो फिलहाल लेकिन इन लोगों ने जल्दी जल्दी मैसेज कर दिए हैं सही सही वो जान लेते हैं, एंड बाकी आंसर क्या है वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन सही आंसर देने वालों का नाम जो है वो अभी हम जानने वाले हैं। सो संधु जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, उसके बाद सतीश जी ने जो है वो भी बिल्कुल सही आंसर दिया है, उसके बाद सैफुल्लाह जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, निलोफर हसन जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, लियाकत जी आई एम सो सॉरी बट आपने जो आंसर दिया है वो गलत है, उसके बाद शेख जी ने जो है वो सबसे पहले आंसर दिया है लेकिन उनका अपना नाम जो है वो पूरा नहीं लिखा है। सो कंग्रेचुलेशंस पीपल, आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया, लेकिन जो लोग अभी अभी हमें सुनना जो है वो उन्होंने शुरू किया है उन लोगों को एक और मौका दे देते। आपके पास मौका है, आप मुझे बताइए कि हमारे कतर का नेशनल बर्ड जो है वो कौन सा है, एंड अगर उसके बारे में एक आध लाइन मुझे बता देंगे, एक आध फैक्ट बता देंगे तो और बढ़िया होगा। 3311063 इज द नंबर, जल्दी से मुझे मैसेज कर दीजिए कि अगर आपको पता है या नहीं पता है कि हमारे यहाँ का नेशनल बर्ड जो है वो क्या है, कतर का नेशनल बर्ड क्या है। एंड ठीक है यार, जैसे सुदेव कहा करते हैं, ये पता करते हैं कि आप 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं और कशिश से कितनी ज्यादा स्मार्ट है। फिलहाल जबरदस्त हिट गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, तो जरा वॉल्यूम बढ़ाइए और आपकी कशिश के साथ इंजॉय करते जाइए। बाकी आंसर 3311063 पर। मैं हूँ आपकी कशिश, स्टे ट्यून, जियो बिंदास।
2: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: मॉल में आ गया है ड्राइव द ड्रीम। सिर्फ 100 रियाल खर्च करो, फ्री रैफल कूपन पाओ और जीतो दो टोयोटा लैंड क्रूजर 2026 GXR।
2: साथ में 1,00,000 रियाल कैश प्राइस और 10 आईफोन 18 प्रो मैक्स बर्गंडी भी।
1: ऑफर वैलिड टिल 16th मार्च 2027।
2: जल्दी आओ अबू सुधरा मॉल, कूपन लो और अपने ड्रीम कार जीतो।
1: ड्राइव द ड्रीम ओनली एट अबू सुधरा मॉल।
3: Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Al Wakra. For more details, call 500-56123.
4: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning.
5: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
4: इन एसोसिएशन विद
5: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक विजिट bima.com.qa बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड TNC अप्लाई।

ऑफ कोर्स जी, मैं तो यही हूँ, मैं कहाँ जाऊंगी आपसे दूर, आपको छोड़कर, आपसे जो है बातचीत करने के लिए तो इतनी सुबह सुबह उठ के आई हूँ। अब देखिए जी, मेरा अलार्म बज रहा है क्योंकि मैं इस वक्त नॉर्मली उठा करती थी, एंड देखिए इस वक्त हमारी बातचीत को आधा वक्त बीत भी चुका है। हाँ जी, आपकी कूल सी कशिश जो है यहाँ पर आ चुकी है, एंड मैंने आपसे थोड़ी देर पहले ना एक सवाल किया था कि जरा मुझे बताइए कि ये जो हमारा यानी कतर का नेशनल बर्ड कौन सा है, एंड कुछ लोगों ने तो ईगल लिख दिया। चलिए मैं मान गई ईगल बर्ड है, एंड फाल्कन और ईगल बहुत सिमिलर दिखता है तो हो सकता है कि कन्फ्यूज हो गए, लेकिन कुछ लोगों ने ऑरेक्स भी लिखा है। ऑरेक्स जो है एनिमल है, ऑरेक्स एक फॉक्स जैसा दिखता है जो डिजर्ट में रहता है, एंड फाल्कन जो है वो जो है एक बर्ड है, एंड मैंने बर्ड ही पूछा था, एंड आंसर जो है वो आपको पता चली गया होगा कि अब फाल्कन है। किस किस ने बिल्कुल सही आंसर दिया है वो हम जान लेते हैं। पहले योगिनी जी ने जो है पहले तो ऑरेक्स लिखा था, लेकिन उसके बाद उन्होंने लिखा हाय कशिश, होप यू आर वेल, दिस इज योगिनी एंड कतर्स नेशनल बर्ड इज फाल्कन। ओके, मान गए जी आपका बाद में गूगल सर्च किया हुआ, लेकिन योगिनी जी मैसेज करने के लिए थैंक यू सो मच, ऐसे ही बने रहिए। मैं मजाक नहीं उड़ा रही हूँ आपका, लेकिन मैं भी यही करती हूँ। फिलहाल संतोष जी ने जो है वो भी बिल्कुल सही आंसर दिया है, उसके बाद श्रवण जी ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है, उसके बाद अवीस खान जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, मोहम्मद जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, संदू जी ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है। गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं आप? सो देखिए, आप सबकी नॉलेज में मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि मेरी जो ऑडियंस है वो एकदम ही इंटेलिजेंट है, लेकिन बस उनका होस्ट जो है वो इतना इंटेलिजेंट नहीं है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपनी नॉलेज बढ़ाऊँ और ऐसे ही और खबरें आपको बताती जाऊँ। सो थोड़ी सी देर में हम बात करने वाले कि ये जो मौसम में बदलाव आ रहा है ये कब हमें पूरी तरीके से देखने को मिल जाएगा, एंड कौन से ऐसे सितारे हैं जिनके इधर उधर जाने से ये मौसम बदलाव आता है। सो अगर इस चीज की नॉलेज नहीं है तो थोड़ी सी देर में हम आपको नॉलेज देने वाले, सो स्टे ट्यून्ड रहिए। फिलहाल जो है 4 बज गए, गाना आ रहा है आपकी रेडियो सेट्स पर, वैसे तो अभी 7:30 बज रहे हैं, 7:32 हो रहा है, लेकिन फिर भी हम जो है 4 बज गए वाला गाना इंजॉय करेंगे क्योंकि इसमें वाइब है। सो फिलहाल फालतू मूवी का ये अमेजिंग वाला ट्रैक इंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ, और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार अलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में, फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए अलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए अलदार एक्सचेंज ऐप नाउ।
1: Third party insurance may be a requirement, but with Bima, you get so much more. Get 24/7 roadside assistance with towing, recovery, tyre change, fuel delivery, battery boost and lockout support. Split your payment into 4 installments and stay claim-free to enjoy 7% cashback. Plus, get a replacement car for up to 3 days, a one-time airport drop-off and vehicle inspection transportation. Choose Bima, third part of liability today. Call 800-786 or WhatsApp 740-5055 or visit bima.com.qa. Bima for your peace of mind. TNC apply.
2: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning.
1: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ।
2: इन एसोसिएशन विद
1: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

0: मैं हूँ सारिका
1: सारिका
0: आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3
2: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

बेदर्द या तो ये मौसम हो रखा है, क्योंकि इस मौसम के चलते जो है मैं बाहर की खूबसूरती जो है वो अच्छी तरीके से इंजॉय नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब जो है मौसम विभाग का जो है ये कहना है कि यार गाइस बहुत जल्दी ही अच्छा मौसम आने वाला है। हाँ जी, सैटर्न जो है वो आज ब्राइट दिखेगा। कदर कैलेंडर हाउस के मुताबिक जो है आज रात जो है आसमान में सैटर्न जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा बड़ा होगा एंड ब्राइट नज़र आएगा। एंड इस पर जो है मौसम पर भी इसका काफ़ी अच्छा असर होने वाला है। मौसम में थोड़ी सी तब्दीली जो है वो देखने को मिलेगी। अल सराफा स्टार जो है वो राइज होने के साथ ही कतर में गर्मी जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। लेकिन अब यानी अब जो है नो लुकिंग बैक, अब सिर्फ हम आगे बढ़ेंगे, आगे का ही देखेंगे। एंड अब मौसम जो है ठंडा होना और ज़्यादा शुरू हो जाएगा। लेकिन यानी ये जो मैं रोज़ कंप्लेन करती रहती हूँ ना कि यार 20s में नहीं आ रहा टेम्परेचर, 30s में भी इतना हाई चल रहा है, ये सब जो है कंट्रोल हो जाएगा। सो ब्रदर, अब मौसम जो है वो जैसे ही कम होगा वैसे ही फन फॉलोज माय ब्रदर, फन फॉलोज। अगर ये मीम रेफरेंस आपको समझ नहीं आया है तो इंस्टाग्राम पे जो है कुछ अच्छी चीज़ें देखा करो, मीम भी है वैसे आजकल। और बहुत सारे लोग मुझे अभी भी मैसेज कर रहे हैं। देखिए कॉन्टेस्ट हम ख़त्म कर चुके हैं, आप लोगों को जो है हम ऑलरेडी आंसर बता चुके हैं कि कतर का नेशनल बर्ड जो है वो फाल्कन है। थैंक यू सो मच हमें आंसर देते रहने के लिए। एंड बस आप सबको जो है मैं इसी बात पे एक अमेजिंग गाना जो है वो सुनाना चाहती हूँ। सो बेबी डू डाई डू से एक अमेजिंग वाला गाना जो है आपके रेडियो सेट्स पर, इसे वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय कीजिए और थोड़ी सी देर बाद आप जो है सुनेंगे ऑल ऑफ अपडेट्स, जहाँ पर सारी जो ऐसी खबरें हैं जो आपका जानना जरूरी है वो आपको मिलने वाली है। सो जरा वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: एंटरटेनमेंट की यहाँ कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
3: इन एसोसिएशन विद
2: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: Drive the Dream has arrived at Abu Sidra Mall. Just spend 100 riyal, get a free raffle coupon and win 2 Toyota Land Cruiser 2026 GXR.
2: Plus 1 lakh riyal in cash prize and 10 iPhone 18 Pro Max Burgundy.
1: Offer valid till 16th March 2027.
2: Hurry to Abu Sidra Mall, grab your coupon and win your dream car.
1: Drive the Dream, only at Abu Sidra Mall.
3: अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार अलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में। फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए अलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए अलदार एक्सचेंज ऐप नाउ।
4: नमस्कार, माय नेम इज आशीष विद्यार्थी एंड यू आर लिसनिंग टू कतर्स टॉप मोस्ट हिंदी एफएम चैनल 106.3 रेडियो ऑल ऑफ जियो बिंदास।

0: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
0: इन एसोसिएशन विद
1: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

0: देखिए जी, वही तो कर रहे हैं, दिल दिया गल्ला करने ही तो यहाँ बैठे हैं, सुबह सुबह आपसे बातचीत करने, ऐसे यू नो ऐसे थॉट्स को आपस में अदला बदली करने के लिए ही तो यहाँ पर आकर बैठे हैं, सिर्फ आपके लिए। आपकी एक कूल सी छोरी यहाँ पर आ चुकी है, आपकी कशिश लेकर आपके लिए शो बिंदास मॉर्निंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक मॉर्निंग को जो है बिंदास बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा लिया है। अब देखिए यार, बोरिंग बेसिक मॉर्निंग तो हो ही जाती है, लेकिन आज जो है वो कुछ स्पेशल डे है जिसे जानकर आपको जो है खुशी होगी, और अगर खुशी नहीं भी होगी तो भी एटलीस्ट आपकी नॉलेज जो है वो बढ़ जाएगी, ताकि आप अपने दोस्तों के सामने, आपकी कलीग्स के सामने थोड़ा सा फ्लेक्स कर सकें कि यार देखो मुझे नॉलेज है। सो देखो, आपको जो है ज़्यादा रिसर्च करने से मैं बचा रही हूँ यहाँ पर, एंड आपको मैं बता रही हूँ कि यार आखिर जो है क्या क्या खास जो है आज है। सो आज जो है 4th of October है, एंड आज जो है एनिमल डे सेलिब्रेट किया जाता है। हाँ जी, सो एनिमल डे के दिन हमारे कतर में भी काफ़ी कुछ खास होता है। सो वर्ल्ड एनिमल डे पर जो है कतर में काफ़ी सारे मेजर फोकल पॉइंट्स जो हैं वो होते हैं, कम्युनिटी रेस्क्यू जो है एफर्ट्स लगाए जाते हैं, एंड गवर्नमेंट ड्रिवन कॉन्वर्जेशन जो है वो भी होती है अलग अलग जगहों पर, यानी अलग अलग जगहों पर जो है काफ़ी सारी सभाएँ होती हैं, काफ़ी सारी मीटिंग्स होती हैं, ताकि एनिमल्स को बचाया जा सके। अब अगर मैं देखूँ, ये तो हो गई हमारी थियोरेटिकल बात, लेकिन अगर प्रैक्टिकल ग्राउंड पे बात की जाए तो एनिमल्स का एंड कतर में जो है बहुत एक डीपली रूटेड जो है वो कहा गया है। ऑरिक्स जो है वो यहाँ का नेशनल एनिमल है, हमने जैसे आज सुबह भी बात करी थी, एंड कैमल्स आप इतने अच्छे तरीके से यहाँ पे देख लेते हो, कैट से लोग कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, एंड बहुत सारे अलग अलग एनिमल से जो है वो प्यार हमें दिखता है, एंड यहाँ के स्कल्पचर्स में भी आपको जो है काफ़ी कुछ ऐसा दिख जाएगा, यहाँ पे पेंटिंग्स में आपको ऐसा कुछ दिख जाएगा। सो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत डीपली रूटेड है कतर का कल्चर एनिमल्स के साथ, और काफ़ी यू नो बहुत कुछ जो है कम्युनिटी लेवल पर होता भी रहता है। सो ऐसे बहुत सारे इवेंट जो है वो भी हो रहे हैं, एंड मॉल ऑफ कतर में जो है एक बहुत ही खास इवेंट हुआ था एनिमल वेलफेयर इनिशिएटिव का, जहां पर वर्ल्ड एनिमल डे पे जो है अडॉप्शन की जो है स्टोरीज और यू नो एनिमल्स की न्यूट्रिशन के बारे में, उन्हें सपोर्ट करने के बारे में काफ़ी बातचीत हुई, जो मुझे लगता है कि किसी भी नेशन के लिए, किसी भी सिटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। एंड वाइल्ड लाइफ कन्वर्सेशन पे भी काफ़ी सारी बातें हो चुकी हैं। तो इन शॉर्ट देखिए, एनिमल्स को भी जो है थोड़ी सी वैल्यू देना इम्पॉर्टेंट होता है। फिलहाल आपको जो है हम और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं और नहीं दे वो करूँगी, आप पे ओवरलोड नहीं करूँगी, बाकी अगर कुछ आपको जो है ऐसे ही फैक्ट्स पता चले तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा 3311063 पर। फिलहाल कूल सॉन्ग ऑफ द आवर आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, सो ज़रा वॉल्यूम बढ़ा कर ये हाई रेटेड वाला गाना जो है इन्जॉय कीजिए। हाँ जी, गाने का नाम है हाई रेटेड गबरू, सो इसे इन्जॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ, और कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Party insurance may be a requirement, but with Bima, you get so much more. Get 24/7 roadside assistance with towing, recovery, tire change, fuel delivery, battery boost, and lockout support. Split your payment into 4 installments and stay claim-free to enjoy 7% cashback. Plus, get a replacement car for up to 3 days, a one-time airport drop-off, and vehicle inspection transportation. Choose Bima, third part of liability today. Call 800-786 or WhatsApp 740-5055 or visit bima.com.qa. Bima for your peace of mind. TNC apply.
2: Abu Sidra Mall mein aa gaya hai Drive the Dream. Sirf 100 riyal kharch karo, free raffle coupon pao aur jeeto do Toyota Land Cruiser 2026 GXR.
3: Saath mein 1 lakh riyal cash prize aur 10 iPhone 18 Pro Max burgundy bhi.
2: Offer valid till 16th March 2027.
3: Jaldi aao Abu Sidra Mall. Coupon lo aur apne dream car jeeto.
2: Drive the dream only at Abu Sidra Mall.
4: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
4: इन एसोसिएशन विद
1: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक विजिट bima.com.qa बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड टीएनसी अप्लाई

हाँ जी, मौसम तो देखो कातिल सा हो ही रहा है। इतना अमेजिंग वाली फीलिंग जो है वो तो आ ही रही है, लेकिन अब सोचिए जब टेम्परेचर थोड़ा और नीचे गिर जाएगा तो कितना ज्यादा मजा आ जाएगा। हाँ जी, ये छोरी तो कूल है लेकिन मौसम भी कूल कूल हो जाएगा। आप समझ रहे हैं मैं मौसम से कितनी ज्यादा ऑब्सेस्ड हूँ कि मुझे जो है इस टॉपिक के अलावा किसी और टॉपिक पे बात करने में मजा ही नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी आपके लिए बिंदास मॉर्निंग जो है मैं शो लेकर आ गई हूँ। सो थोड़ी सी आपकी मॉर्निंग को इन्फॉर्मेटिव एंड बिंदास बनाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली है वो मैं पूरी करूंगी। इम्पाउंडेड व्हीकल्स जो है उनका ऑक्शन होने वाला है। सो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने आज जो है इंडस्ट्रियल एरिया में जो है जितनी भी जब्त करी हुई गाड़ियां हैं उनका पब्लिक ऑक्शन जो है वो शुरू किया है, जो है 2 हफ्ते तक चलेगा। सो अगर आप अपनी गाड़ी लेने का सोच रहे थे यार, सोच रहे थे कि यार न्यू अभी नहीं ले सकते, अभी पहले जो है थोड़ा हाथ साफ करना है, सो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बाकी मुझे ऐसे लगता है कि हमें ना थोड़े से ऐसे सूदिंग वाले गाने भी अब चलाने चाहिए। सो इसीलिए आतिफ असलम और श्रेया घोषाल की आवाज़ में बहुत ही अमेजिंग वाला गाना जो है आपके रेडियो सेट्स पर आ रहा है। सो ज़रा वॉल्यूम बढ़ाकर ये इन्जॉय कीजिए एंड मुझे मैसेज कीजिए 3311063 पर कि आगे आप किस बारे में बातचीत जो है वो करना चाहते हैं। मैं हूँ आपकी कशिश, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: Third party insurance may be a requirement, but with Bima, you get so much more. Get 24/7 roadside assistance with towing, recovery, tire change, fuel delivery, battery boost, and lockout support. Split your payment into 4 installments and stay claim free to enjoy 7% cashback. Plus, get a replacement car for up to 3 days, a one-time airport drop-off, and vehicle inspection transportation. Choose Bima, third part of liability today. Call 800-786 or WhatsApp 740-5055 or visit bima.com.qa. Bima for your peace of mind. TNC apply.
2: Festivities की planning, it's always quite overwhelming. But when it comes to planning your jewelry purchases, Malabar Gold and Diamonds काफी है. अब सिर्फ 25% pay करें and lock in your gold rate 8th November तक. Then if the price increases at the time of purchase, आप पा सकते हैं the booked rate. और अगर gold price drop होती है, you get the lower rate. है ना enough reasons to start the celebrations already? तो आज ही अपना price locked, gold secured कीजिए with Malabar Gold Golden Diamonds.
3: सुनिए हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में मॉर्निंग
4: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
4: इन एसोसिएशन विद
1: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक विजिट bima.com.qa बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड टीएनसी अप्लाई

हाँ जी, हम तुम और ये अमेजिंग वाले गाने और क्या चाहिए। हाँ जी, आपकी कूल सी छोरी कसूस जो है वो आ चुकी है लेकर आपके लिए बिंदास मॉर्निंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक मॉर्निंग को बिंदास बनाने का बिरयानी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है मैंने अपनी इन नाजुक कंधों पर उठा लिया है। अब देखिए यार, जेंजी जो है वो आए दिन कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। मैं भी एक जेंजी हूँ, लेकिन ये जो नया कॉन्सेप्ट मैंने इंस्टाग्राम पर देखा है, ये कहीं ना कहीं मुझसे हजम नहीं हो रहा है। मैंने इतने एंटीसिड ट्राई कर लिए लेकिन ये हो ही नहीं पा रहा है। एक्चुअल में एक नया ब्रेकअप टर्म जो है वो लॉन्च किया गया है, जिसे कहते हैं फ्रंट लोब ब्रेकअप। यानी आपका ब्रेन जो है जब फुल्ली डेवलप हो जाता है तो आप बेटर सोच पाते हो, एंड जितने भी रिलेशनशिप आपने इनिशिएट किए होते हैं, मतलब जिन भी लोगों की का रिलेशनशिप बहुत छोटी उम्र से शुरू हो गया था, अब वो मैच्योर होने के बाद, यानी अब वो थोड़ा और एज में समझदार होने के बाद, उम्र में बड़े होने के बाद सोचते हैं कि क्या हमने सही फैसला लिया है, और इससे जो है ब्रेकअप्स हो रहे हैं। यानी ये कहना चाह रहे हैं आप, जो बहुत पहले से कहा जा रहा है कि अकल आ जाती है तो फिर आपको रिलेशनशिप की वैल्यू ज्यादा समझ आने लग जाते हैं। देखिए,

मुझे नहीं पता कि जेंजीज जो है क्या करना चाह रहे हैं. मैं खुद जेंजी का पार्ट होगी भी नहीं समझ पा रही हूँ. सो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बेस्ट पार्ट यही है कि आप जिस इंसान के साथ हैं उसे फुलेस्ट जो है प्यार कीजिए एंड प्यार दिखाइए एकदम एक्स्ट्रा करके. क्योंकि बॉलीवुड से हमने सीखा है कि कितना रिजिड बंदा हो, कितना भी यू नो डिसइंटरेस्टेड इंसान हो, लेकिन वो प्यार के आगे तो देखो झुक ही जाता है. फिलहाल इसी बात को जो है कंटिन्यू करते हुए एक बहुत ही अमेजिंग वाला ट्रैक जो है आपकी रेडियो सेट्स पर मिर्जापुर द मूवी से. सो जरा वॉल्यूम बढ़ाकर इंजॉय कीजिए एंड अपने लव्ड वन को ये गाना डेडिकेट कर दीजिए एंड मेरे तरफ से भी डेडिकेटेड ही समझिए किसी को. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas.
1: अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार अलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में। फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए अलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए अलदार एक्सचेंज ऐप नाउ।

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
3: इन एसोसिएशन विद
2: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

क्या कोइंसिडेंस वाली बात है ना, वर्ल्ड एनिमल डे के दिन जो है हम एनिमल मूवी के गाने प्ले कर रहे हैं। वाओ वाओ वाओ, मतलब ऐसा मैंने सोचा नहीं था, लेकिन अभी अभी मैंने बस ऐसा सोचा कि ऐसा बोला जा सकता है, इसलिए मैंने बोल दिया। गाइज आई नो, लोग जो है सोच के बोलते हैं, मैं बोलने के बाद सोचती हूँ। अभी तो आपकी ये जो छोरी है ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा कूल है, और इस छोरी का नाम है आपकी कशिश, एंड शो में आपके लिए लेकर आ गई हूँ बिंदास मॉर्निंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक मॉर्निंग को बिंदास बनाने का जो बीड़ा है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मैंने अपनी नाजुक कंधों पर उठा रखी है। अब देखिए यार, जितने भी लोग इस वक्त यू नो क्रिएटर बने हुए हैं, यूट्यूब पे कुछ क्रिएट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे क्रिएट कर रहे हैं, उनके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं लेकर आई हूँ। यूट्यूब ने अब जो है, अगर आप किसी की वीडियो एज इट इज उठाकर जो है यूट्यूब पर डालते हो, या एआई स्लॉप वीडियो यानी एआई से बनाई हुई वीडियोज जो है वो आप यूट्यूब पर डालते हो, तो अब शॉर्ट्स पे वो आप नहीं कर सकते। अगर आप उसमें जो है कुछ मेजर चेंज कर रहे हो, जैसे आप किसी की वीडियो पे रिएक्ट कर रहे हो, तो आप वीडियोस डाल सकते हो। अदरवाइज अगर आप किसी की एज इट इज वीडियो किसी और पेज से उठाकर अपने पेज पर डाल रहे हो, या एआई से बनाई हुई वीडियो डाल रहे हो, तो अब आप वो नहीं कर पाओगे। यूट्यूब ने ये किया है ताकि वो ओरिजिनल कंटेंट को और ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर्स को बढ़ावा दे सके। यार मुझे काफी अच्छा लग रहा है ये वाला जो चीज है, लेकिन एक चीज मुझे लगता है यूट्यूब को और फिल्टर करनी पड़ेगी। कई बार लोग जो है चेंजेस के नाम पे जो है सिर्फ कैप्शन लिख देते हैं, या पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक ऐड कर देते हैं, एंड इससे जो है जो एल्गोरिथम है उसको लगने लगता है कि यार ये तो न्यू है, ये तो बिल्कुल अलग वीडियो है, लेकिन होती वो ओरिजिनल क्रिएटर की बनाई हुई वीडियो है। सो इस पे भी जो है मुझे ऐसे लगता है यूट्यूब को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बाकी एक बहुत ही अमेजिंग वाला गाना मुसाफिर कैफे से आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, सो जरा वॉल्यूम बढ़ाकर ये गाना एंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ, और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: Wolf Short Break. अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार अलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में। फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए अलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए अलदार एक्सचेंज ऐप नाउ।
1: मैं हूँ आदा शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3।

0: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
0: इन एसोसिएशन विद
1: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लाइबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट बीमा.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

0: बड़े मियाँ एक तरफ, छोटे मियाँ दूसरी तरफ, एंटरटेनमेंट जो है वो दूसरी तरफ, और मैं भी एंटरटेनमेंट की तरफ।
1: ये छोरी कशिश,
0: हाँ जी, आपकी कूल सी छोरी कशिश जो है वो आ चुकी है यहाँ पर बिंदास मॉर्निंग लेकर, जहाँ पर आपकी बेसिक बोरिंग मॉर्निंग को बिंदास बना रही हूँ मैं अपनी बातचीत के साथ। अब देखिए यार, वैसे तो हमने बात कर ली बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, लेकिन असली में एक लड़की है जिसकी हरकत मुझे लगी है सुभान अल्लाह, मतलब बस यही है इनका बिहेवियर, जिसकी वजह से जो है हमारी मम्मी से हमें डांट खानी पड़ती है कि तुम जो है अपना फ़ोन जो है उसे क्यों इतना प्यार करते हो, उसे छोड़ क्यों नहीं देते। एंड वो जो मीम्स बनते हैं ना सोशल मीडिया पे कि जो है लोग किसी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के लिए या फिर ओटीपी देने के लिए फ़ोन खोलते हैं एंड फिर रील स्क्रॉल करते रह जाते हैं, बस यही जो है एक लड़की के साथ हुआ। एक तो मैं बिना हंसी रोके जो है हंसी रोक के बता ही नहीं पा रही। ओके ओके कशिश, कॉन्सेंट्रेट, फोकस। सो देखिए मैं बताती हूँ आपको हुआ क्या। सो एक लड़की जो बहुत बुरा हुआ ये हुआ, ठीक है। सो एक लड़की जो है अपनी घर की बालकनी से फ़ोन यूज़ कर रही थी एंड वो गिर गई, एंड वो नीचे जो है एक शीट थी उस पर जाकर गिरी, मतलब दूसरे घरों का जो शेड होता है ना उस पर गिरी वो जाकर, एंड वहाँ पर बैठी एंड वहाँ पर जो है रील स्क्रॉल करने लग गई, सीरियसली। एंड बहुत देर तक वो रील स्क्रॉल करती रही, फिर उसको याद आया कि अरे मैं तो यहाँ पे फंसी हुई हूँ किसी की छत पे, तो फिर उसने फिर किसी को कॉल किया एंड फिर वो नीचे आई। बताओ यार, रील का एडिक्शन कैसा है कि मतलब ऐसी कंडीशन में भी आप रील देखना, हंसना, उसे शेयर करना जो है प्रेफर कर रहे हो। आप इमरजेंसी कॉन्टैक्ट को जो है अपनी लोकेशन शेयर करने की जगह रील जो है वो शेयर कर रहे हो, कितनी बढ़िया वाली बात है। वैसे ज़बरदस्त सिट गाना जो है ये भी बहुत बढ़िया है, एंड दिलजीत दुसांझ का गाना अगर हो जाए तो और मज़ा आ जाता है ना। सो इसीलिए एक अमेजिंग वाला गाना जिसका नाम है बंदा, डंकी मूवी से दिलजीत की आवाज़ में आ रहा है आपकी रेडियो सेट्स पर। सो ज़रा वॉल्यूम बढ़ाकर ये जबरदस्त हिट गाना एंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ, और कहते रहिए जियो बिंदास।
2: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।

0: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
2: इन एसोसिएशन विद
1: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।
3: अरे तुम का बताई भैया हमरा हाल का है। निकले थे हम हलवा खाने, मुंह ही जल गया है।

क्या कहा आपने, क्या आपने मुझसे मेरा फेवरेट मूवी का जॉनर पूछा? ऑफ कोर्स मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ, और वो है शाहरुख खान डांसिंग टू चटपटे गाने, जैसे कि ये वाला। मैं हूँ आपकी कशिश, अंशु आपके लिए बिंदास मॉर्निंग लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर आपकी बेसिक बोरिंग मॉर्निंग को बिंदास बनाने का जो बीड़ा है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखा है। अब देखिए, ये जो अभी आपने गाना सुना ना डॉन मूवी का, इस पे जो है शाहरुख खान ने अपनी आवाज भी दी है, सो मेरे लिए तो ये डबल अमेजिंग चीज हो गई है। वैसे अगर मैं बात करूं मूवीज की, सो अभी एक मूवी जो है वो रिलीज हुई है, वो है दृश्यम कंक्लूजन, एंड उसके रिव्यूज इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे जो मैंने देखे हैं अमेजिंग आ रहे हैं। मतलब लोग कह रहे हैं कि थर्ड पार्ट की वैसे तो जरूरत नहीं थी, लेकिन बनाया है क्योंकि स्टोरी कंप्लीट करनी थी, तो बढ़िया बनाया है। एंड जो है बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं कर रही, बिकॉज डायरेक्टर जो है सेकेंड पार्ट के और थर्ड पार्ट के एकदम सेम है, तो वो जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन है। एंड बाकी मैं जो है, जैसे मैंने कल भी कहा था कि अपना सेकेंड हैंड एक्सपीरियंस आपको बताऊं, तो वो ज़्यादा जस्टिफाई नहीं करेगा। हमारे बहुत सारे लिसनर्स एंड हमारी प्यारी सिमरन जी जो है वो गई थी मूवी देखने के लिए, सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रिव्यू है ये हमें उन पर ही छोड़ देना चाहिए, वो बेटर बता पाएंगे कि आखिर कैसा था ऑल इन ऑल एक्सपीरियंस इस मूवी का, एंड क्या कुछ नया जो है वो हमें देखने को मिल पाएगा। एंड बाकी इस मूवी में जो सैम है वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, सो मुझे जो है काफ़ी यू नो इनसाइट्स पहले ही मिल गए थे कि यार क्या हुआ था। मतलब मैं उन्हें परेशान करती हूँ मैसेज कर करके कि यार एक बार बताओ ऋषभ, आप ये जो सैम बने हो, आपको खुद पता था कि आपकी मूवी में ये होने वाला है, कि आपके साथ ये कुछ होने वाला है? सो मैं बहुत परेशान करती हूँ उन्हें। एंड ये जो मूवी रिलीज हुई, जो थर्ड पार्ट रिलीज हुआ, सो उसमें उनको भी बहुत बड़ा जो एक शौक लगा था। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं ऋषभ से कॉन्वर्जेशन जो है वो करूं, तो आप मुझे जो है ज़रूर से मैसेज कीजिएगा 3311063 पर, और अगर इनसाइट्स आपको जानने हैं दृश्यम के, सो वो भी आपको मिल जाएंगे। फिलहाल जो है मुझे ऐसा लगता है कि एक सूदिंग, एक अच्छा फील गुड वाला गाना जो है वो हमें सुनना चाहिए। एंड जब हम फील गुड की बात करते हैं तो मोहित चौहान का नाम तो सबसे ऊपर आ ही जाता है। सो अभी कुछ दिनों से गाने का नाम है, ये आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, सो ज़रा वॉल्यूम बढ़ाकर ये गाना इन्जॉय कीजिए मोहित चौहान की आवाज़ में। मैं हूं आपकी कशिश, मुलाकात होगी आपसे थोड़ी सी देर में, स्टे ट्यून्ड, और कहते रहिए आपकी कशिश के साथ, जियो बिंदास।

0: माँ, मुझे छोटा एड ब्रेक्स दिखाई दे रहे हैं माँ।
1: ओलिव शॉर्ट ब्रेक।
0: अला जादू।

0: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
2: इन एसोसिएशन विद
1: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

जितना फनी इस गाने का शुरुआती बैकग्राउंड म्यूजिक है ना, उतनी ही अमेजिंग इस गाने के लिरिक्स लिखे गए। मतलब क्या खूब लिखा है आपने, मुझे तो काफी मजा आ गया। एंड आप सबको भी आई एम श्योर बिंदास मॉर्निंग में मजा आया होगा। हाँ जी, ये कूल सी छोरी आपकी कसूस जो है आपके साथ बिंदास मॉर्निंग पे आज थी 106.3 रेडियो आलिफ पर। एंड मैंने पूरी कोशिश की आपकी बेसिक मॉर्निंग को बिंदास बनाने की, लेकिन अब मेरे यहाँ से जाने का वक्त आ गया है, आपको टाटा बाय बाय करने का वक्त आ गया है, क्योंकि आज जाऊंगी तभी तो कल सेम वक्त पे वापस आ पाऊंगी। सो कल सुबह 6 बजे बिल्कुल तैयार रहिएगा अपनी सीट बेल्ट बांध के, क्योंकि आपके साथ हम जो है एक उड़ान भरने वाले हैं एंटरटेनमेंट की बिंदास मॉर्निंग पे। फिलहाल शाहरुख खान एट हिज पीक, कभी अलविदा ना कहना से रॉक एंड रोल सुनिए आरएफ की रेडियो सेट्स पर। और इसी गाने के साथ आपको टाटा बाय बाय बोल के मैं जा रही हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, खाना खाते रहना, पानी पीते रहना, गाड़ी धीरे धीरे हौले हौले चलाना, सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल मत भूलना, और आपकी कशिश के साथ 106.3 रेडियो आलिफ पर अमेजिंग गाने इंजॉय करते रहना। टाटा बाय बाय, टेक केयर, जियो बिंदास।

गुड मॉर्निंग, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 एफएम. दिस इज मी मुस्कान विद योर शो का नाम ऑफ कोर्स. यहाँ पर लाइफ मस्त है, चालू हो चुका है. और दुनिया के बहुत सारे पार्ट्स में ना लोग आज बोल रहे होंगे कि यार संडे है, थोड़ा लेट उठ लेंगे. लेकिन हम कतर में हैं, संडे है, चलो काम पे. यहाँ संडे का मतलब ना वीकेंड का लेजी एंडिंग नहीं होता. यहाँ पे संडे का मतलब होता है वर्क वीक की बिगनिंग. और मुझे लगता है कि संडे मॉर्निंग का एक अलग ही साइकोलॉजी होता है. फ्राइडे और सैटरडे को हम फ्यूचर में जाते हैं, कल क्या करेंगे. लेकिन संडे मॉर्निंग आते ही इस वीक क्या क्या करना है, मतलब सडनली ईमेल्स याद आ जाते हैं, मीटिंग्स याद आ जाती हैं, पेंडिंग काम याद आ जाते हैं. और जो काम फ्राइडे को बहुत अर्जेंट लग रहा था वो सैटरडे को मिस्टीरियसली डिसअपियर हो गया. सो आज ऑलिव पर, रेडियो ऑलिव पर, यहाँ पर मैं आपको बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछ रही हूँ कि आपका संडे मॉर्निंग मूड क्या था, एनर्जेटिक, स्लीपी या वो फेमस मूड. प्लीज, मुझे आज भी यू नो ऑफिस जाने का मन नहीं है, वो वाला. बाय द वे, संडे फॉर मी इज वेरी एनर्जेटिक, क्योंकि समटाइम्स आई फील यार दो दिन के बाद ना जब आप ऑफिस जाते हो तो आपके पास ऑलरेडी बहुत कुछ होता है करने के लिए. यू नो, बहुत सारी मीटिंग्स हैं, बहुत सारी प्लानिंग्स हैं, और मैं तो कलीग को मिस करने लग जाती हूँ. सो यू टेल मी कि आपका आज सुबह मूड कैसा था. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान और नंबर है 3311063. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: सो लेट्स डू वन एक्सपेरिमेंट. आपको ना मैं एक आर नहीं दे रही हूँ, 30 मिनट भी नहीं, सिर्फ 10 मिनट. 10 मिनट आप रीडिंग कर लो, वॉकिंग कर लो, या 10 मिनट रूम को ऑर्गेनाइज कर लो, 10 मिनट अपने फाइनेंसेस चेक कर लो, 10 मिनट बिना फोन के बैठ जाओ. और हम अक्सर बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम टाइम की होती ही नहीं है. प्रॉब्लम होती है कि हम किसी काम को स्टार्ट करने के लिए बहुत बड़ा टाइम स्लॉट इमेजिन कर लेते हैं. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है. भाई ये ना बेस्ट टाइम है मेरी लाइफ का, जब मैं आपसे बातें कर रही होती हूँ. मुझे लगता है कि वर्कआउट करना है तो आपको लगता है कि आपको 2 घंटे निकालने पड़ेंगे, जाना आना, वर्कआउट करना. बुक पढ़नी है तो कम से कम आधा घंटा चाहिए. रूम क्लीन करना है तो पूरा आफ्टरनून लग जाएगा. बट मे बी 10 मिनट इज इनफ टू बिगिन. और बिगनिंग का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पता है क्या है? वंस यू स्टार्ट, 10 मिनट्स कब 20 मिनट्स बन जाते हैं पता ही नहीं चलता. सो आज लाइफ मस्त है चैलेंज आपके पास है. अगर आपको सिर्फ 10 मिनट फ्री मिल जाए तो आप उन्हें किस चीज में इन्वेस्ट करना चाहोगे, स्पेशली इन ऑफिस. यू नो ऑफिस में भी हमारे पास ब्रेक्स होते हैं, आफ्टर लंच और बिफोर लंच, आपके पास इतना टाइम होता ही है. सो यू टेल मी कि उस 10 मिनट में आप क्या जो चीज है एक्चुअली आराम से करना चाहोगे. इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना आंसर नहीं है. सो डोंट टेल मी कि आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करोगे. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. मैं हूं मुस्कान और ये है लाइफ मस्त है.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है.

सो टुडे इज 4th of October, राइट? और आज से वर्ल्ड स्पेस वीक चालू हो रहा है, अक्टूबर 4th से लेके अक्टूबर 10th तक। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है। और 2026 का थीम है रॉकेट रिवॉल्यूशन। इस साल फोकस है कि रॉकेट और लॉन्च टेक्नोलॉजी कैसे रैपिडली चेंज हो रही है, रीयूजेबल रॉकेट्स, लोअर लॉन्च कॉस्ट और स्पेस को ज्यादा एक्सेसिबल बनाने वाली टेक्नोलॉजी। लेकिन साइंस की क्लास नहीं लगाएंगे यहाँ पे, एक इमेजिनेशन गेम खेलते हैं। आपको एक स्पेस हॉलिडे मिली है, राइट? अर्थ के अलावा सिर्फ एक जगह विजिट कर सकते हो आप। मून हो सकता है, मार्स हो सकता है, स्पेस स्टेशन हो सकता है, या बस विंडो सीट से अर्थ को देखना है आपको। बस इमेजिन कीजिए आप स्पेस में हैं, नीचे पूरा अर्थ है और सडनली आपको व्हाट्सएप मैसेज आया कि डिनर में क्या खाओगे। सो अर्थ से 400 किलोमीटर ऊपर जाकर भी इंडियन फैमिली का सवाल वही रहने वाला है। सो यू टेल मी कि अगर आपको एक स्पेस ट्रिप मिले तो आप कहां जाना चाहोगे। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और ये है लाइफ मस्त है।

0: नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास
1: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

सो बहुत सारे ना सेलिब्रिटीज के बर्थडे आते जाते रहते हैं, बट कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि यार कुछ लोगों के बारे में बात करना तो बनता है. सो टुडे इज द बर्थडे ऑफ सोहा अली खान. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है. और सोहा का नाम आते ही मेरे दिमाग में ना एक फिल्म इंस्टेंटली प्ले होती है, विच इज रंग दे बसंती. सो कुछ मूवीज ना सिर्फ मूवीज नहीं होती, वो एक टाइम कैप्सूल होती है. और आप मूवी देख रहे होते हो लेकिन एक्चुअली आप अपनी लाइफ का एक पर्टिकुलर वर्जन याद कर रहे होते हो. मे बी कॉलेज डेज, मे बी फर्स्ट जॉब, मे बी हॉस्टल, मे बी वो फ्रेंड्स जो अब लाइफ में है ही नहीं, मे बी वो थिएटर जहां आपने मूवी देखी थी और सालों के बाद सेम मूवी एक्सीडेंटली टीवी पर आ जाए और सडनली यू आर बैक देयर. यू नो दैट्स द मैजिक ऑफ सिनेमा. सो आज का क्वेश्चन थोड़ा सा पर्सनल है कि आपकी लाइफ की वो कौन सी मूवी है जो आपको देखते ही किसी पर्टिकुलर फेज में वापस लेकर जाती है. मूवी का नाम बताइए, मेमोरी हम इमेजिन कर लेंगे. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूं मुस्कान और ये है लाइफ मस्त है.

सो व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट बर्थडे, तो मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे थे लोगों के फ्रेंड्स के बर्थडे हैं, कॉलीग्स के बर्थडे, एंड आई वाज लाइक यस वी कैन विश हियर. सो आपको आज बताती हूँ कि आज इंडियन क्रिकेट के डायनामिक प्लेयर में से एक ऋषभ पंत का भी बर्थडे है. सो ऋषभ पंत का बर्थडे ना ऑफकोर्स आज ही के दिन है, और एज रिकॉर्डेड बाई ICC मैं पढ़ रही थी कि उनके बर्थडे से एक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन निकलती है. क्रिकेट हम सब देखते हैं, कैसे क्रिकेट हम अब देखते हैं, एक टाइम था मैच देखने के लिए टीवी के सामने बैठना पड़ता था, फिर केबल आया, फिर मोबाइल लाइव स्कोर्स आए, फिर नोटिफिकेशंस, और अब तो कभी कभी बैट्समैन ने शॉट मारा भी नहीं होता, फोन पहले बोल देता है कि यार फोर लग गया यहाँ पे. और कुछ लोग मैच भी नहीं देखते, बस व्हाट्सएप ग्रुप खोलते हैं, भाई क्या हुआ, स्कोर कितना है और कौन आउट हुआ, और फिर कहते हैं कि हाँ हाँ मैच फॉलो कर रहा हूँ. सो आप मुझे बताइए कि आप क्रिकेट कैसे फॉलो करते हो, फुल मैच देख के, लाइव स्कोर्स देख के, इंस्टाग्राम की रील्स देख के, या फिर किसी दोस्त के व्हाट्सएप स्टेटस से. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल एट 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान, और शो का नाम है ऑफकोर्स लाइफ मस्त है. बाय द वे एशियन गेम्स चल रहे हैं, कल मैच था, बहुत ही जबरदस्त मैच हुआ, सो वी विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो, और बात करेंगे फैशन की भी. सो आप मुझे बताइए कि आपको संडे मॉर्निंग कैसी फील होती है. अब तो आते आते मतलब मिड मॉर्निंग हो गया है, सो वी ऑल हैव लॉट ऑफ थिंग्स यू नो लाइन अप हैं जो. सो यू टेल मी कि आपके लिए आफ्टर यू नो वीकेंड संडे कैसा फील होता है. 3311063 इज माई नंबर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: trek. Brought to you by Nanatal Pahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif Alkhor. Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Nanatal Pahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif Alkhor.
1: अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार अलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में। फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए अलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए अलदार एक्सचेंज ऐप नाउ।
2: हाय एवरीवन, मैं हूँ अरमान मलिक, 106.3 FM रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدنا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: You are listening to Radio Olive 106.3 FM Geo Bindas.
2: अपनों को पैसे भेजना हुआ और भी आसान, अलदार एक्सचेंज का वीजा डायरेक्ट सीधा आपके परिवार के बैंक अकाउंट में, कतर में पहली बार।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल पासपोर्ट ऑफ

सो फैशन में ना कुछ मोमेंट्स होते हैं जो रनवे से सीधा इंस्टाग्राम तक पहुंच जाते हैं, और रिसेंटली ऐश्वर्या राय बच्चन का पेरिस फैशन वीक लुक जो है वो एग्जैक्टली वही मोमेंट था। लॉरेल पेरिस के एक्सप्रेस योर वर्थ शो में ऐश्वर्या ने ड्रामेटिक ब्लैक कटोर लुक के साथ ना डीप रेड हेयर डेब्यू किया था, और सोशल मीडिया लुक जो है वो इंस्टेंटली कॉन्वर्सेशन बन गया। भाई मुझे फैशन का ये पार्ट ना बहुत ही फैसिनेटिंग लगता है। एक सेलिब्रिटी ने हेयर कलर चेंज किया और नेक्स्ट मॉर्निंग इंटरनेट मतलब पूरा बोल रहा है कि शुड आई गो रेड, मतलब पूरे इन्फ्लुएंसर्स लाल बाल के पीछे पड़ गए। एक एक्ट्रेस ने लिपस्टिक लगाई और मतलब आप उसकी लिपस्टिक ढूंढने लग जाते हो कि भाई ये कौन सा कलर है, कौन सा ब्रांड है। और एक सेलिब्रिटी ने बैग कैरी किया, वेयर कैन आई गेट दिस बैग, मतलब सोशल मीडिया आपको सब कुछ बता देता है। सो फैशन ना सिर्फ कपड़ों तक नहीं है, इट्स ऑल्सो अबाउट इन्फ्लुएंस। सो हियर इज माई क्वेश्चन कि अगर किसी सेलिब्रिटी का लुक आपको जेन्युइनली पसंद आ जाए तो आप उसका हेयर स्टाइल कॉपी करोगे, मेकअप या आउटफिट, या सिर्फ सेव करके बोलोगे कि ब्यूटीफुल बट नॉट फॉर मी। जैसे मैं बोलती हूँ भाई रेड कलर के हेयर वो ऐश्वर्या राय पर ही अच्छे लगते हैं, मैंने अगर करा लिए तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुद से भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और मतलब आई डोंट फील लाइक कि मैं उसमें अच्छी लगूंगी। सो यू टेल मी कि आप क्या करते हो। 3311106 इज़ माई नंबर, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: वणक्कम, मैं हूं जैकी श्रॉफ।
1: रेडियो 106.3
0: जे ओबिंदास।
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

सो फैशन की दुनिया में ना एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्ट्रोडिक्शन है. ट्रेंड्स तो चेंज होते रहते हैं लेकिन क्राफ्टमैनशिप्स नहीं. आज दुनिया मिनिमलिज्म, लग्जरी, क्वाइट फैशन और सस्टेनेबल जो क्राफ्टमैनशिप है उसकी बात कर रही है. और इंडिया के पास सेंचुरी से हैंड एम्ब्रॉयडरी है, टेक्सटाइल है, वेविंग है, क्राफ्टमैनशिप की अपनी लैंग्वेज है. चिकनकारी को देख लीजिए, हैंड एम्ब्रॉयडरी देख लीजिए, ट्रेडिशनल इंडियन टेक्सटाइल देख लीजिए या फिर जरदोजी जैसी कढ़ाई देख लीजिए. सेम टेक्निक्स को डिजाइनर आज कंटेम्प्रेरी

सलॉट्स के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं और शायद इसीलिए इंडियन क्राफ्टमैनशिप जो है वो बार बार फैशन में वापस आ जाता है, क्योंकि फैशन पुराना हो सकता है लेकिन खूबसूरत वर्कमैनशिप रेयरली बिकम्स इररेलेवेंट। सो आपके लिए इंडियन फैशन का सबसे टाइमलेस एलिमेंट क्या था? देखिए, मेरे लिए तो साड़ी है जो हमेशा रहेगी, चाहे वो जरदोजी की कढ़ाई के साथ हो, चिकनकारी हो या फिर कोई ब्यूटिफुल सा हैंडवर्क हो। इसी के साथ चिकनकारी के अलावा ज्वेलरी हो गया और लहंगा हो गया, ये सब चीज़ें हैं जो टाइमलेस हैं ही। बट यू टेल मी कि आपको क्या टाइमलेस लगता है, या कोई रीजनल इंडियन क्राफ्ट जो आपको लगता है कि दुनिया को और देखना चाहिए। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और ये है लाइफ मस्त है।

सो एवरी डे आई टॉक अबाउट बुक्स राइट. सो आज एक अनयूजुअल बुक क्वेश्चन है मेरा आपसे कि मैं आपसे ये नहीं पूछूंगी कि आपकी फेवरेट बुक कौन सी है. इंस्टेंट आई विल से कि आप कौन सी बुक दोबारा पढ़ना चाहते हो. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है. बट देर इज अ कैच. बुक इसीलिए नहीं क्योंकि इट वॉज योर फेवरेट, इसलिए क्योंकि यू हैव चेंज्ड. अब आप सोचिए, आपने कोई किताब है जो 20 साल की एज में पढ़ी थी, उस वक्त उसका एक मीनिंग था. आज वही किताब उठाओगे ना तो मे बी अ कम्प्लीटली डिफरेंट लाइन सडनली हिट करेगी, क्योंकि समटाइम्स बुक नहीं बदलती, रीडर बदल जाते हैं. मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जो अपने कॉलेज टाइम पे पढ़ी थी व्हेन आई वाज जस्ट 18 और 19. मुझे किताबें पढ़ना पसंद था, पर आज जब मैं उन किताबों के बारे में देखती हूं तो आई फील कि वो बहुत चेंज हो गई हैं, उनका मतलब चेंज हो गया है. और मुझे लगता है कि दैट्स वन ऑफ द ब्यूटिफुल थिंग अबाउट रीडिंग. सेम वर्ड्स डिफरेंट यू. और ऑलिव पर यहाँ पर लाइफ मस्त है मैं. आप मुझे बताइए कि कौन सी बुक आप दोबारा पढ़ना चाहोगे, क्योंकि यू आर नॉट द सेम पर्सन हु रीड इट एट द फर्स्ट टाइम. यू नो उस टाइम पर लव स्टोरीज बड़ी बहुत ही छोटी छोटी सी लगती थी. ऐसा लगता था कि ये तो मतलब सच होगा, लेकिन आज के टाइम पर मैं वही लव स्टोरी पढ़ती हूँ या देखती हूँ या सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि रियल लाइफ से थोड़ा सा दूर है. सो यू टेल मी ऐसी कौन सी किताब है जो अब आपको थोड़ी सी बदली हुई लगती है. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. मैं हूं मुस्कान और ये है लाइफ मस्त है. नंबर इज सेम 3311 1063.

0: Trek. Brought to you by Nanadal Pahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif Alkhor. Abu Sidra Mall mein aa gaya hai Drive the Dream. सिर्फ 100 रियाल खर्च करो, फ्री रैफल कूपन पाओ और जीतो दो टोयोटा लैंड क्रूजर 2026 GXR.
1: साथ में 1,00,000 रियाल कैश प्राइज और 10 आईफोन 18 प्रो मैक्स बर्गंडी भी.
0: ऑफर वैलिड टिल 16th मार्च 2027.
1: जल्दी आओ अबू सुधरा मॉल, कूपन लो और अपने ड्रीम कार जीतो.
0: ड्राइव द ड्रीम ओनली एट अबू सुधरा मॉल.
2: सलाम प्रणाम नमस्कार वणकम, मैं हूं जैकी श्रॉफ, रेडियो ऑलिव, बोलो बिंदास.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल पासपोर्ट।

0: यार संडे का भी ना एक अलग प्रॉब्लम है, अब आपका ऑफिस तो चालू हो गया है, अब आप थिएटर में जाके कोई मूवी तो देख नहीं सकते। वीकेंड था आपके पास, आपने या तो दृश्यम 3 देखी होगी या फिर दोस्तों के साथ या फिर कहीं और टाइम स्पेंड किया होगा। सो कभी कभी हम मूवी देखना नहीं चाहते, हम बस अपना मूड देखना चाहते हैं। फ्रेश OTT रिलीज आई है, यहाँ पर दो मूवीज हैं, एक है दोपहिया सीजन 2 जिसका ना बहुत ज़्यादा प्रमोशन हो रहा है, मैंने भी अभी तक देखी नहीं है। टाइटल देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जो पोस्टर वगैरह है फन मूवी होगी, सो इसीलिए मैंने इसको वीकेंड वॉच लिस्ट में डाला था बट देख नहीं पाई। यू आर लिस्टिंग रेडियो ऑल एव 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है। लेकिन इमेजिन टू कंप्लीटली डिफरेंट मूड्स ना, एक साइड आपको डार्क इंटेंस सस्पेंसफुल स्टोरी चाहिए और दूसरी तरफ चाहिए लाइट कॉमेडी इजी गोइंग एंटरटेनमेंट, और चॉइस आपके मूड पर डिपेंड करती है। कभी हम सोचते हैं कि यार गिव मी सम इंटेंस थ्रिलर मूवी जो बड़ा मजा आ जाए देख के, और कभी कभी हमें लगता है कि नहीं यार अब काम के साथ इतनी थ्रिलर नहीं देख सकते, दिमाग ऑलरेडी संडे के लिए टेंशन में है और कुछ हल्का फुल्का चलाओ। सो आपको याद आती है चुंबक जैसी सीरीज, भाई 8 एपिसोड्स के बाद मुझे लगा कि सीरीज खत्म हो गई, पर उन्होंने 9 से लेके बाकी के 16 एपिसोड्स तक अपलोड कर दिया है। सो यू कैन वॉच दैट ऑल्सो। और आपका OTT मूड क्या है, थ्रिलर कॉमेडी रोमांस फैमिली ड्रामा या वो लेजेंडरी ऑप्शंस जो कुछ भी नहीं बस नेटफ्लिक्स खोलो और कुछ भी देखते रहो वाला। सो आई विल से मतलब आई विल सजेस्ट कि अगर आप बीच में कभी ऐसे मूड को ठीक करने के लिए कुछ देखना चाहते हो देन यू कैन गो विद चुंबक। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।

यू नो, मैं जब भी इंस्टाग्राम खोलती हूँ स्पेशली ऑन वीकेंड्स, तो कतर में मुझे दिखता है कि लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं. मतलब ब्रेकफास्ट दिखाते हैं, कॉफी, फिर आउटफिट, फिर उनका हॉलीडे, फिर स्टेकेशंस, डिनर, सनसेट. और फिर मुझे लगता है कि यार ये इनकी एक्चुअल लाइफ है या बस इनकी लाइफ का ट्रेलर है. सोशल मीडिया पर शेयर करना एब्सोल्युटली नॉर्मल है, बट एक इंटरेस्टिंग लाइन है, शेयरिंग योर लाइफ वर्सेस परफॉर्मिंग योर लाइफ. क्या हम मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं या मोमेंट को कैप्चर करने में इतने बिजी हैं कि एंजॉय करना भूल ही जाते हैं? क्योंकि ऑनेस्टली मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो कैप्चर करते हैं लेकिन बाद में फ़ोन साइड में रख के ना बहुत अच्छे से पार्टी को या अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं. बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरा टाइम फ़ोन में लगे रहते हैं, उनको लगता है फटाफट से पहले अपलोड करना है, फिर कितने लाइक्स आए, क्या लोग कॉमेंट कर रहे हैं, क्या कौन कौन से मैसेजेस आ रहे हैं. तो मैंने दोनों तरह के लोग देखे हैं. सो हर ब्यूटीफुल मोमेंट को कैमरे की ज़रूरत तो होती नहीं है. कुछ मोमेंट्स का कोई ऑडियंस नहीं होना चाहिए, सिर्फ आप. सो मुझे लगता है आप मुझे बताइए कि आप इंस्टाग्राम पर एवरीथिंग शेयर करते हो या फिर सिलेक्टेड मोमेंट्स, या कुछ चीजें स्ट्रिक्टली प्राइवेट रखना पसंद करते हैं. यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल 106.3 एफएम. मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है. नंबर सेम 3311 1063. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

और अब आपसे बातें करते करते ना मेरे जाने का टाइम भी हो गया, मुझे पता भी नहीं चला. सो नाउ लेट्स रीसेट आवर संडे. लेकिन प्लीज इंस्टाग्राम वाला संडे रीसेट नहीं, जहां आप सुबह 6 बजे उठ के अपना ग्रीन जूस बना रहे हो, 1 घंटे के लिए वर्कआउट कर रहे हो, फिर अपनी डायरी लिख रहे हो, मील प्रेप कर रहे हो, वार्डरोब ऑर्गेनाइज कर रहे हो, स्किन केयर कर रहे हो और उसके बाद ऑफिस जा रहे हो. भाई ये सब नहीं होता संडे को. दिस इज ऑल अबाउट यू नो इंस्टाग्राम. और एंड में एक ब्यूटिफुल

0: कौन सा था जो जनरली आपको लगता है कि आपका संडे जो है वो आसान बना देता है? कौन सा ऐसा यू नो चीज़ें हैं जो आप सबसे पहले वीकेंड पे करना पसंद करते हैं? और ऑनेस्टली यहाँ पर मैं सारे मैसेजेस पढ़ रही हूँ व्हाट्सएप पे. 3311063 इज माई नंबर. दिस इज द टाइम एंड आई हैव टू से कि मुझे जाना होगा. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुनते रहिए रेडियो ऑलिव, और ये है लाइफ मस्त है विद सुपर हिट गाने.
1: Radio

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार अलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में, फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए अलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए अलदार एक्सचेंज ऐप नाउ।
2: Third party insurance may be a requirement, but with Bima, you get so much more. Get 24/7 roadside assistance with towing, recovery, tire change, fuel delivery, battery boost and lockout support. Split your payment into 4 installments and stay claim free to enjoy 7% cashback. Plus, get a replacement car for up to 3 days, a one-time airport drop-off and vehicle inspection transportation. Choose Bima, third part of liability today. Call 800-786 or WhatsApp 740-5055 or visit bima.com.qa. Bima for your peace of mind. TNC apply.
3: Hi guys, this is Vani Bhanushali.
4: Hey, this is Ileana De Cruz.
5: This is me, Ritik Roshan.
6: Hi, I'm Alia Bhatt.
7: Hi, I'm Vivek Anand Oberoi and you're listening to Radio Olive. Jio Bindas.

0: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।
1: अभी मजा आएगा ना भिड़ो।
2: नवराई माझी लाडाची ग, आवडतीला चंद्राची चंद्राची ग।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: Gentlemen, this is London Airport. The local time is 11:30.

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ।

You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha Aage ji aapke saath Olive Recharge lekar a very good afternoon meri jaan. 4th of October, Sunday ka din, kaise hai, kya hal chal hai, sab badhiya hai na, sehat wagera ekdam tandurust. I hope so. And how was your weekend? बताएं मुझे, मैं भी बताऊंगी कि मेरा वीकेंड कैसा था. आपको तो पता है एकदम ताबड़तोड़ वीकेंड होता है मेरा. बहुत क्रेजी क्रेजी काम कर देती हूँ मैं, तो वही किया है मैंने इस वीकेंड भी. करूंगी शेयर आपसे, लेकिन सबसे पहले आपके हाल चाल जानते हैं. 3311106 नंबर मैसेज कीजिए या फिर कॉल कर दीजिए 4444106 पर. और सुनते रहिए रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास मेरी जान.

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
1: Sasrikal ji, main haan Harbhajan Maan aur tusi sun rahe ho Qatar da number 1 Hindi radio station, Radio All of 106.3 FM. Jio Bindaas.
2: This hour is brought to you by
3: Malabar Gold and Diamonds में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM
1: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द

0: unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
1: Fresh fish on the grill, slow-cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Dana Dal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
2: Only laga aur ho ja recharge. Only recharge.
3: Olive recharge. रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
2: ऑलिव रिचार्ज.
4: दिस आवर इज ब्रॉट टू यू बाय
5: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें. विजिट योर नियरेस्ट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ.

You're listening to Radio 106.3 FM. तनिषा आपके साथ ऑलिव रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर, और एक बहुत बढ़िया चीज पढ़ी मैंने इंस्टाग्राम पे. कभी कभी ना ये इतनी कमाल कमाल की चीजें दिखा देता है फीड कि मजा आ जाता है पढ़ के. एंड इट सेज, भाग्य में होगा तो भागेगा कहीं नहीं, भाग्य में ना होगा तो साम दाम दंड भेद सब कर लो, मिलेगा भी नहीं, कोई फायदा नहीं है. कितने भी एफर्ट्स डालो अगर वो आपके लिए नहीं लिखा है, इट्स नॉट मेंट टू बी फॉर यू, तो वो नहीं होगा. बट इफ इट इज मेंट टू बी फॉर यू, तो कोई भी उसे आपकी लाइफ में होने से आने से नहीं रोक सकता. सो जस्ट कीप डूइंग योर एफर्ट्स और अपने ऊपर बिलीव रखो, एंड देन ऑल विल बी वेल. आपको पता ही है, बाकी मुझ पर भी थोड़ा सा बिलीव रखो क्योंकि बढ़िया गाने भेज रही हूँ यहाँ पे. हाँ जी, स्टे ट्यून्ड ऑन रेडियो 106.3 FM.

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: अपनों को पैसे भेजना हुआ और भी आसान, अलदार एक्सचेंज का वीजा डायरेक्ट सीधा आपके परिवार के बैंक अकाउंट में, कतर में पहली बार।
2: लगा और हो जा रिचार्ज।
1: ओलिव रिचार्ज, रेडियो ओलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
3: This hour is brought to you by
4: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ।

You're listening to Radio Olive 106.3 FM, Tanisha आपके साथ Olive Recharge चल रहा है यहाँ पर और एक बहुत ही प्यारी चीज मैंने पढ़ी Instagram पे, so I had to share it with you and it says you cannot see your reflection in the boiling water. That says a lot. आप अपना रिफ्लेक्शन जिस तरह से एक उबलते हुए पानी में नहीं देख सकते, सिर्फ स्टिल पानी में देख सकते हैं, सेम वे जब हम गुस्से में होते हैं हमें नहीं समझता कि हम क्या बोल रहे हैं, हम किस तरह से इंसान को हर्ट कर पा रहे हैं, यू नो ऑल दोज थिंग्स हम उसके बारे में सोचते ही नहीं हैं. सो जब भी गुस्से में हो कंट्रोल करो, नहीं हो पा रहा है वहाँ से चले जाओ, टेक अ पॉज. क्योंकि ये भी कहा जाता है कि आप 60 सेकेंड्स अगर किसी थॉट को लेकर बैठो तो आपको रियलाइज होगा कि यार ये इतनी बड़ी बात नहीं है, इसके ऊपर गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, ये कामली भी चीजें हो सकती हैं. सो दैट इज व्हाई दे से कि यू नो पॉज बिफोर यू रिएक्ट व्हेनेवर यू आर एंग्री. इसीलिए मेरी जान, कभी भी लगे कि गुस्सा आ रहा है, शब्दों से तो दूर ही रहो अपने, क्योंकि जो कटाक्ष निकलते हैं और शब्दों के जो घाव होते हैं वो भरना बहुत मुश्किल होता है. वी ऑल हैव बीन देयर डन दैट राइट. हमें भी किसी ने गुस्से में कुछ ना कुछ कहा है एंड दोज वर्ड्स स्टिल हॉन्ट अस. तो हम उस पोजिशन में खुद को क्यों लेकर आए कि हम किसी को इतना ज्यादा हर्ट कर दे कि आज से 4 साल बाद भी वो इंसान हमारे शब्दों को लेकर बैठा रहे कि यार उसने मुझे ऐसा बोल दिया था. सो लेट्स जस्ट नॉट ट्राई एंड नॉट डू दैट. हाँ मैं भी कोशिश ही कर रही हूँ, हो जाता उस टाइम पे कंट्रोल नहीं होता, बट या धीरे धीरे प्रैक्टिस में आएगा तो सब हो जाएगा. स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास.

0: Olive Radio 106.3. Jio Bindas.
1: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian radio network.
2: Radio Olive, I'm number one.
1: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM, जियो बिंदास

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ओलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ।

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट Malabar Gold and Diamonds शोरूम नाउ।

0: तनीषा के साथ यहाँ रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर ऑलिव रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर। और भाई दृश्यम रिलीज हुई थी इस लास्ट वीकेंड को, देखा कि नहीं आपने? कैसी लगी आपको मूवी? एंड जो लिसनर्स यहाँ से जीत के गए थे भाई, कैसा लगा? बढ़िया एक्सपीरियंस था या नहीं? शेयर कीजिए अपने रिव्यूज। आई वुड लाइक टू नो कि आपका क्या ओपिनियन है अबाउट दैट मूवी। बट जब मैंने पहली दृश्यम देखी थी ना, आई फेल्ट लाइक भाई क्या क्रेजी चीज बना दी। आई डिड नॉट नो दैट इट इज अ कॉपी ऑफ मलयालम मूवी मोहनलाल साहब की, तो बाद में मुझे पता चला। बट द स्टोरी लाइन इज क्रेजी एंड यू नो जो दिमाग लगाया गया है कमाल था यार। राइटर्स ना मैं सोचती हूँ, कहा जाता है कि धुरंधर भी काफ़ी फिक्शनलाइज्ड है और उसको इस तरह से शूट किया गया है कि वो नॉन फिक्शन फील हो, पर जिस तरह से लिखी गई है इट इज कमेंडेबल। लोग कितना दिमाग लगा देते हैं इन चीजों में, और हम यहाँ एक मेल भी खुद से टाइप नहीं कर सकते, हमें वो भी चैट जीपीटी से लिखवाना होता है। कमाल करते हो यार। सेंडिंग एन अमेजिंग ट्रैक योर वे, स्टे ट्यून्ड ऑन जियो विंदास।
1: अब सुनिए

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: दिस आवर इज ब्रॉट टू यू बाय
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड शो।

0: You're listening to Radio All Over 106.3 FM. Tanisha आपके साथ All Over Recharge चल रहा है यहाँ पर और वक्त हो गया है.
1: ये है चलती फिरती डिक्शनरी.
0: So डिक्शनरी से आज जो मैं वर्ड लेकर आई हूँ वो है फ्लिबर्टिजिबिट. It sounds so fun, right? The spelling is FLIBERTIGIBBET. फ्लिबर्टिजिबिट. इसका बेसिकली मतलब वो ये होता है कि एक ऐसा इंसान जो कि बहुत फ्रिवलस है, चैटी है और जिनका दिमाग एक जगह पे टिकता नहीं है, इधर उधर उछलते ही रहते हैं, जो फोकस्ड नहीं रह पाते, ऐसे लोगों को कहते हैं ही और शी इज अ फ्लिबर्टिजिबिट. एंड किसी ना किसी का ख्याल तो आ ही रहा होगा दिमाग में, खुद का भी आ सकता है, वी नेवर नो. शेयर करना चाहते हैं तो आ जाइए 3311063 पर. स्टे ट्यून्ड, एंड जियो बिंदास.

0: अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार अलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में, फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए अलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए अलदार एक्सचेंज ऐप नाउ।
1: लगा और हो जा रिचार्ज।
0: ऑलिव रिचार्ज, रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर, जियो बिंदास।
2: दिस आवर इज ब्रॉट टू यू बाय
3: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ।

You're listening to Radio Olive 106.3 FM Dinisha आपके साथ. Olive Retard चल रहे हैं यहाँ पर और कह रहे हैं कि अभी अक्टूबर में ही, वैसे कहा तो 1 अक्टूबर से था कि लग ही जाएगा, आई एम नॉट श्योर अभी तक हुआ है कि नहीं, पर व्हाट्सएप बिजनेस विल स्टार्ट चार्जिंग यू लाइक 14 पैसा ऐसा कुछ. तो मैं सोच रही थी कि फिर हम पर्सनल पे ही यूज कर लेते हैं, वैसे भी उसमें तो ऑप्शन है ना 2 अकाउंट चलाने का. क्या सिस्टम है उसका वो थोड़ा फिगर आउट करना पड़ेगा, पर ऐसे तो व्हाट्सएप बिजनेस का बिजनेस ठप हो जाएगा यार अगर इन्होंने मैसेजेस पे पैसे चार्ज करना शुरू कर दिए. दैट विल बी सच अ क्रेजी थिंग. आई एम जस्ट इमेजिनिंग क्यों ना आप एक व्हाट्सएप का मैसेज भेज रहे हो, लोग फिर हे हाय और वो जो कुछ अनोइंग लोग होते हैं जो एक एक वर्ड लिख के मैसेज भेजते हैं वो सब बंद हो जाएगा, सब एक पैराग्राफ में निपटा देंगे सारा कुछ कि भाई एक ही बार का पैसा लगे, इससे ज्यादा ना लगे. तो या दैट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड. बताएं मुझे कि आप क्या करेंगे अगर व्हाट्सएप इस तरह से पैसे लेने लग गया मैसेजेस के. तो 3311106 ट्रिपर स्टेट यू नियो बिंदास.

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha आपके साथ Olive Recharge चल रहा है अब.
1: Lame jams.
0: का आज का मेरा सवाल एकदम आसान है. इसका जवाब तो ऐसे चुटकी बजाते ही आ जाएगा. The question is कि एक cow डांस कर रही है तो उसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे. एक काउ डांस कर रही है तो उसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे. बहुत आसान है. इंग्लिश का एक वर्ड है. ऐसे उसे संधि विच्छेद करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे तो दो वर्ड्स मिला के एक वर्ड बन रहा है और वो आंसर है और वो दोनों मेरे क्वेश्चन में भी हैं. सो अगर एक काउ डांस कर रही है तो उसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे. 3311 1063 पर बताइए या फिर कॉल कर दीजिए 4444 1063 पर. एंड स्टेट यूनिटेड रेडियो ऑलिव. बढ़िया वाला गाना भेज रही हूँ. जियो बिंदास मेरी जान.
2: करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो. हमने समझा था इश्क की मोहब्बत को ही ख्याल दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा आम शक्ल.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
1: अब सिद्रा मॉल में आ गया है ड्राइव द ड्रीम। सिर्फ 100 रियाल खर्च करो, फ्री राफल कूपन पाओ और जीतो दो टोयोटा लैंड क्रूजर 2026 GXR।
2: साथ में 1,00,000 रियाल कैश प्राइज और 10 आईफोन 18 प्रो मैक्स बर्गंडी भी।
1: ऑफर वैलिड टिल 16th मार्च 2027।
2: जल्दी आओ अबू सुधरा मॉल, कूपन लो और अपने ड्रीम कार जीतो।
1: ड्राइव द ड्रीम ओनली एट अबू सुधरा मॉल।
3: हाय गाइस, दिस इज जुनीता गांधी। You are listening to me on Radio Olive, Geo Bindas.
4: Radio Olive, I'm a number one.
0: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
5: This hour is brought to you by
6: Malabar Gold and Diamonds में सिर्फ 25% advance देकर अपना gold price lock करें। Visit your nearest Malabar Gold and Diamonds showroom now.

क्या बढ़िया गाना यार, मजा आ गया सुन के। You're listening to Radio Olive 106.3 FM, Dinisha आपके साथ। Olive Rejog चल रहा है यहाँ पर, और मैंने पूछा था Lame Jams का आज को मेरा सवाल था कि एक काउ जो डांस कर रही है उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, और भाई जो ही यहाँ पे जवाबों की ऐसे लाइन लग गई है, सबने सही जवाब दिया है, एक आधी कुछ गलत है, बट दैट इज ओके, हो जाता है, कोई बात नहीं। एंड यस द करेक्ट आंसर इज गाइडेंस। गाइडेंस द इंग्लिश वर्ड, यस करेक्ट, यस यस, प्राउड ऑफ यू मेरी जान, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन माई लेमनेस, और ऐसे मेरा दिन बनाने के लिए, इसी बात पे आपका दिन बनाने के लिए एक बढ़िया गाना। स्टे ट्यून्ड रेडियो ओलिव दास रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।

कमाल गाना ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ ऑलिव रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर. और अगर अभी तक नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, सुन लो ना मेरी बात. RadioOlive.qa is the handle हमारे सोशल मीडिया का, फॉलो कर लो फटाफट से नहीं किया है तो, क्योंकि कॉन्टेस्ट चल रहे होते हैं, आईफोन वगैरह जीतने का चांस है आपके पास. हाँ जी, जाके कॉमेंट कर दो उस पोस्ट पे. एंड देर आर अदर कॉन्टेस्ट, बहुत सारी वीडियोज हम पोस्ट करते रहते हैं, चेकआउट कीजिए. हमें पता चलना चाहिए कि चीज़ें आप तक पहुँच रही है. किसके लिए कर रहे हैं हम? आपके लिए तो कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि आप इंपॉर्टेंट हैं, बस इतनी सी बात है और मोहब्बत है आपसे. सो जाइए, थोड़ी सी मोहब्बत वहां पर दिखाइए, नहीं तो यहाँ आ जाइए 3311063 पर और सुनते रहिए रेडियो ऑल एफ 106.3 एफएम. जियो बिंदास मेरी जान.

0: टफ काम और भी आसान। कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
1: अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार हल्दार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में। फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए हल्दार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए हल्दार एक्सचेंज ऐप नाउ।
2: लगा और हो जा रिचार्ज।
1: रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
3: दिस आवर इज ब्रॉट टू यू बाय
4: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ।

0: तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर 1 आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो बिंदास
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

0: की।
1: जब सुबह सुबह अलार्म बजता तो ऐसे ही होता है ना कि मैं ठहरा रहा, जमीन चलने लगी, धड़का ये दिल, सांस थमने लगी।
0: हाँ मुझे प्यार प्यार है तुझी से मेरे यार, यार है।
1: उसमें कोई दो राय नहीं है कि आप लोगों से बहुत सारा प्यार है, इसीलिए तो चार घंटे अब नहीं है बेबी। और बताओ कैसा रहा आपका आज का दिन, क्या किया आपने? और कल मैंने दृश्यम फिल्म देखी, उसके बारे में मैं आपको वापस लौट के बताऊंगी। और आपने क्या किया वीकेंड पे उसके बारे में बता सकते हैं आप मुझे 3311106 पर, आप मुझे बताइए ना।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार हल्दार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में। फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए हल्दार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए हल्दार एक्सचेंज ऐप नाउ।
1: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन।
2: हाय, दिस इज विपाशा बासु।
3: हाय, मैं राजकुमार राव।
4: हाय, मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा।
5: हाय, दिस इज दिशा पार्डी।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम।

आते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए।

ਸੋਣਿਓ ਕਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਲਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਯਮ 3 ਕੀ ਜੀ ਦਾ ਕੰਕਲੂਜਨ ਯੇ ਫਾਈਨਲੀ ਹਮਾਰੇ ਲੱਕੀ ਲਿਸਨਰਸ ਕੇ ਸਾਥ ਹਮਨੇ ਕੱਲ ਯੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਤੋ ਕਿਆ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਬ ਆਪ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਤੇ ਹੋ ਨਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਕੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਬ ਆਪਕੇ ਲਿਸਨਰਸ ਵੀ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਹਮ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਥੇ सो जितनी भी हमारी एक्सपेक्टेशन थी इस फिल्म से वो बिल्कुल ही पूरी हुई यार. बहुत ही मज़ा आया. एक मिनट भी आपको ये नहीं लगा कि यार यू नो कि अरे यार ये क्या ही चल रहा है. भाई मज़ा आ रहा था. यू नो ढाई घंटे जो था इस फिल्म ने हमको बांध के रखा. मतलब एक के बाद एक जो है वो ट्विस्ट आते जा रहा था. स्पेशली जब इंटरवल के बाद वाला जो है ना भाई साहब वो पार्ट तो एकदम कमाल है. अजय देवगन तो कमाल है ही लेकिन इस बार जयदीप अलावत थे भाई ट्रीट है. वो बंदा इस फिल्म में बहुत ही कमाल की एक्टिंग की. वो नहीं कि वो मेरे यू नो फेवरेट हैं और ऐसा नहीं है यार. वो मतलब मज़ा आ गया था फिल्म देख के. इन शॉर्ट अगर आप हमारे लिसनर्स से रिव्यू सुनना चाहते हैं तो रेडियो ऑलिव पर हमने एक वीडियो जो है वो डाला है दृश्यम का मूवी रिव्यू, तो उसको जाके भी आप चेक

0: outrageous 10% advance at Joya Lucas to book your favorite jewelry now.
1: Now? We still have time for the festive season.
0: That's exactly why you should secure the best gold right now. Book in advance at Joya Lucas and protect yourself from gold price hikes. Plus, if the gold price drops, you get the lowest rate. And the best part, you can do it in-store or with just a click on the Joya Lucas app. Advance booking offers valid until 7th November only. Joya Lucas, world's favorite jeweler.
2: Tough kaam aur bhi aasan. Carmel Group laya hai Shantui ke wheel loaders, excavators aur bulldozers. Mazbooti aisi jo har challenge jeet le. Visit Carmel Group now.
3: Iske swag pe munde jaate hain dil haar ke. Ladki ko pasand hai kadak chai, malai maar ke. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
4: आरजे सिमरन के साथ
5: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
6: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोया लुकास जोया लुकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी
7: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप

0: सिमरन कौर आपके साथ। जैसे कि दृश्यम 3 के लिए हमने यू नो कॉन्टेस्ट किया था, हमारे कुछ लकी लिस्टनर्स गए थे हमारे साथ, लेकिन
1: हाय सिमरन, वेरी गुड इवनिंग, मेरा नाम है विनायक। आप सही कह रहे हो, दृश्यम मूवी बहुत अच्छा था और हालांकि आपने कॉन्टेस्ट नहीं जीता, बट आई वेंट यस्टरडे आफ्टरनून टू वॉच मूवी एंड मुझे वहां पर एक सरप्राइज मिला। सरप्राइज ये था कि आप खुद वहां पर मौजूद थे और आपको देख के मुझे बहुत खुशी हुई, बट अनफॉर्चुनेटली मैं आपको आपसे बात नहीं कर सका क्योंकि आप बिजी थे, बट आई एम सो हैप्पी दैट आई एम सी यू देयर एंड या मूवी आल्सो इट्स वेरी नाइस।
0: That's so sweet of you.
1: Thank you
0: so much, विनायक। और एक चीज और है, तो फिर ये फिल्म देखी उसके बाद मेरे को चुल मची एक फिल्म की जिसके लिए मेरा भाई मुझे बहुत टाइम से बोल रहा था, ये नई आई है जो रेजिडेंट ईवल, ठीक है। सो रेजिडेंट ईवल मेरे और मेरे भाई को ऐसी फिल्में जो है बहुत ज्यादा पसंद है, सो ये फिल्म मैंने फाइनली देखी। देखो डर वर तो ऐसा कुछ लगा नहीं, लेकिन हंसी जरूर आई है इस फिल्म को देख के, मजेदार था। कुछ कुछ सीन आपको जो है वो स्केयर जंप करते हैं, लेकिन कुछ कुछ सीन ऐसे आपको लगता मतलब क्यों कैसा हो रहा है। सो कमजोर दिल वाले वो सीन्स जो है वो नहीं देख सकते हैं। सो या रेजिडेंट ईविल अगर आपने नहीं देखी है, तो आपका दिल अगर कमजोर नहीं है तो जरूर देखिएगा, मुझे अच्छी लगी है।

0: Manila's number one radio station, Radio Olive 106.3 FM, Gio Bindas. टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
1: ड्राइव द ड्रीम हैज अराइव्ड एट अबूसिद्रा मॉल। जस्ट स्पेंड 100 रियाल, गेट अ फ्री राफेल कूपन एंड विन 2 टोयोटा लैंड क्रूजर 2026 GXR।
0: Plus 1 lakh rial in cash prize and 10 iPhone 18 Pro Max Burgundy.
1: Offer valid till 16th March 2027.
0: Hurry to Abusudra Mall, grab your coupon and win your dream car.
1: Drive the dream only at Abusudra Mall.
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे,
3: आरजे सिमरन के साथ।
4: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ
5: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
6: लुलू, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

स्टूडियो की घड़ी पे हो चुके हैं। वेदर क्या कहता है चलिए चेक करते हैं। अभी तक का टेम्परेचर एंड फील्स लाइक 36 डिग्री सेल्सियस है। ह्यूमिडिटी डाउन होती नजर आ रही है लेकिन अभी भी है 58% एंड विंड जो है 15 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है। और आज का जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम है 38 डिग्री सेल्सियस। आपके दिमाग का टेम्परेचर तो डाउन है ना, उसको डाउन ही रखा करो यार।

3 FM, Gio Bendaz. Festivities की प्लानिंग

0: जितनी देर तक तो कुछ नहीं जानते हो
1: जिंदगी आसान रहती है दोस्त।
0: जाननी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, जैसे कि रेडियो ऑले 106.3 एफएम विद ए टू जी इवेंट्स ट्रेडिंग एंड केटरिंग लेकर आ गए आपके लिए एक एक्सक्लूसिव म्यूजिकल नाइट। हेलो धूम जी हाँ, और ये 9th ऑफ अक्टूबर को होने वाली एक धमाकेदार इवनिंग होगी। स्टेज पर होंगी बॉलीवुड की सेंसेशनल सिंगिंग स्टार इशिता विश्वकर्मा, बहुत ही कमाल का गाती हैं। लाइव म्यूजिकल परफॉर्मेंस होने वाली है, बहुत सारी ट्रेडिशनल बीट्स, लाइव ऑर्केस्ट्रा, बहुत सारे यू नो इंटरैक्टिव ऑडियंस के साथ डांस वांस म्यूजिक व्यूज सब कुछ होगा, फुल ऑन मतलब मस्ती है इन शॉर्ट, है ना, सेलिब्रेशन के नाम पर, है ना। तो आपको अब क्या करना है, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंच जाना है इस 9th अक्टूबर को रिजेंसी हॉल में, जहां पर हेलो धूम हम करने वाले हैं, और इसको मिस करना बिल्कुल भी जो है वो आपकी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। सो आपको क्या करना है, इसके टिकट्स स्नूनू सिटी पे जाके बुक कर लेना। जैसे आप स्नूनू का एप्लीकेशन खोलते हैं ना, तो वहां पे एक ऑप्शन होगी राइट साइड में नीचे जाके स्नूनू सिटी, वहां पे टिकट्स है ए हालो धूम की। ओके, सो वहां पर जाके क्लिक करके टिकट जो है बुक कर लीजिए। मैं आपको ज्यादा डिटेल्स चाहिए तो आप एक नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो वहां पे भी आपको इन्फॉर्मेशन जो है मिल जाएगी। 3328-3393, एक बार फिर से 3328-3393, इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। बट टिकट्स जब आप बुक करेंगे ना, मेरे को एक स्क्रीनशॉट भेज देना और बोल देना कि सिमरन हो गया। इसीलिए तो कहती हूँ 9th अक्टूबर को

सुनते रहिए रेडियो ऑलिव को, कहते रहिए जियो बिंदास। भाई साहब बेवजह ना सामने, भाई साहब क्या गाना है यार ये, खोसला रघु का। बाय द वे मैंने इंटरव्यू किया था, बहुत जल्दी वो इंटरव्यू सामने भी आएगा। बहुत ही कमाल के लड़के हैं यार ये।

0: अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार हल्दार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में। फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए हल्दार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए हल्दार एक्सचेंज ऐप नाउ।
1: फेस्टिविटीज की प्लानिंग, इट्स ऑलवेज क्वाइट ओवरवेलमिंग, बट व्हेन इट कम्स टू प्लानिंग योर ज्वेलरी परचेसेस, मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स काफी है। अब सिर्फ 25% पे करें एंड लॉक इन योर गोल्ड रेट 8 नवंबर तक। देन इफ द प्राइस इंक्रीजेस एट द टाइम ऑफ परचेस, आप पा सकते हैं द बुक्ड रेट। और अगर गोल्ड प्राइस ड्रॉप होती है, यू गेट द लोअर रेट। है ना इनफ रीजंस टू स्टार्ट द सेलिब्रेशंस ऑलरेडी? तो आज ही अपना प्राइस लॉक्ड गोल्ड सिक्योर्ड कीजिए विद मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स।
2: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन। आप सुन रहे हैं रेडियो ऑल 106.3 FM।
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
4: सिमरन के साथ।
5: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: क्योंकि अपनी वाइफ भी अलग है। मैं ये सुनियो कि दादी की हाल चाल, सत श्री अकाल, सिमरन कौर है तुहाडे नाल। क्या है यार
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ
2: ये बात है।
0: एक बंदी बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। देखो यार, आप जब कहीं से गिर जाते हो तो चोट लगती है, मतलब आपको तो होश ही नहीं आती है। और देखो यार, थोड़ी सी भी जगह से, थोड़ी सी भी ऊंचाई से जब इंसान गिर जाता है तो उसको भाई टाइम लगता है, सब लोग उसको अटेंशन देते हैं। और लेकिन क्या आपने कभी इमेजिन किया है कि कोई 8th फ्लोर से गिर जाए तो उसकी किस्मत है कि वो बच जाए, राइट? सो 8th फ्लोर से ये बंदी गिर गई है, अपार्टमेंट से 8th फ्लोर पे गिर गई है और वो रूफ पे जाके गिरी है बंदी। 30 मिनट बाद उसने, बंदी ने उठ के अपना फोन स्क्रॉल करना स्टार्ट कर दिया। उसकी फोटो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कि भाई नीचे आने से पहले उसने, मतलब 8th फ्लोर से नीचे गिरी है वो, नीचे आने से पहले वो अपना फोन स्क्रॉल कर रहे हैं। भाई साहब, मुझे लग रहा है कि गिरने के बाद इनके पास सुपर पावर आ गया, इनकी शक्तियां जागृत हो गई है कि भाई इनको चोट नहीं लगती है यार। इश्क भी एक ऐसा रीजन हो सकता है यार जी। ओपनर्स
3: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
4: सर क्या पर ये बात है,
5: चेक चेक

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Fresh on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Served with pride. Dana Dal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Alkhor.
2: टफ काम और भी आसान। कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
4: आरजे सिमरन के साथ
5: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ
6: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
7: लुलु हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अभी कैंपिंग सीजन जो है वो 25th ऑफ अक्टूबर से लेकर 20th अप्रैल तक अगले साल तक जो है वो रहेगा, लेकिन उससे पहले इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो कब से स्टार्ट होने वाली है। सो थ्री फेज में इसकी रजिस्ट्रेशन होने वाली है। सो फर्स्ट जो है वो 11th अक्टूबर को सुबह 8 बजे स्टार्ट हो जाएगी एंड उसके बाद 22 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक के बीच में जो है वो चलेगी। सो कुल मिला के कैंपिंग सीजन ऑन होने वाला है और मजा भी फुल ऑन होने वाला है। अरे यार ये तो राइम हो गया। सुंदर ये रेडियो ऑलिव गोर कहते रहिए जीओ बिंदास। ऑलिव रिवाइंड में आज आपके लिए क्या आएगा, बहुत ही प्यारा गाना।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
1: Third party insurance may be a requirement, but with Bima, you get so much more. Get 24/7 roadside assistance with towing, recovery, tire change, fuel delivery, battery boost and lockout support. Split your payment into 4 installments and stay claim-free to enjoy 7% cashback. Plus, get a replacement car for up to 3 days, a one-time airport drop-off and vehicle inspection transportation. Choose Bima, third part of liability today. Call 800-786 or WhatsApp 740-5055 or visit bima.com.qa. बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। गदर की नंबर वन
3: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
4: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
5: लुलू, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: मेरी कसम पे तो मैं भरोसा नहीं करती, लोग बहुत झूठी कसमें खाते हैं। अपन निपट ले किसी की झूठी कसम में। मैं ये सुनियो की तदकी हाल चाल सच अकाल सिमरन कौर है तोड़े ना बिल्कुल ऐसा ही है। सो अगर यू नो जेंजी लिंगो हम डिकोड करते हैं, अगर आप किसी के साथ चैट कर रहे हैं तो जेंजी के साथ, तो उसने आपको SMH जो है लिख के भेज दिया। SMH होता है शेकिंग माई हेड। शेकिंग माई हेड लाइक जिस चीज पे आपको विश्वास नहीं हो रहा, आपको गुस्सा भी आ रहा है, लाइक वॉट इज दिस, आपको लग नहीं रहा कि ये बात सच्ची है। सो SMH यानी कि शेकिंग माई हेड। अभी फिलहाल आप क्या कर रहे हो वो मुझे बताओ। यू आर नॉट शेकिंग योर हेड राइट। चाय पी रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, फोन पे बात कर रहे हो, तो आप मुझे कैसे ही सुन रहे होगे। नहीं, आपकी गाड़ी में भी तो चल रहा हो सकता है ना यार। सो अगर आप गाड़ी में बैठे हो और मुझे सुन रहे हो, तो म्यूजिक सुनते सुनते अगर आपने रेडियो ओलंपिक की स्टोरी कोई बनाई तो मुझे टैग कर दीजिएगा यार। सुनते रहिए रेडियो ओलंपिक और गेदरिए जियो बिंदास।
1: रेडियो

0: coupons at Joya Lucas to book your favorite jewelry now.
1: Now? We still have time for the festive season.
0: That's exactly why you should secure the best gold right now. Book in advance at Joya Lucas and protect yourself from gold price hikes. Plus, if the gold price drops, you get the lowest rate. And the best part, you can do it in-store or with just a click on the Joya Lucas app. Advanced booking offers valid until 7th November only. Joya Lucas, world's favorite jeweler.
2: अब सिद्रा मॉल में आ गया है ड्राइव द ड्रीम। सिर्फ 100 रियाल खर्च करो, फ्री रैफल कूपन पाओ और जीतो दो टोयोटा लैंड क्रूजर 2026 GXR।
3: साथ में 1,00,000 रियाल कैश प्राइज और 10 आईफोन 18 प्रो मैक्स बर्गंडी भी।
2: ऑफर वैलिड टिल 16th मार्च 2027।
3: जल्दी आओ अबू सुधरा मॉल, कूपन लो और अपने ड्रीम कार जीतो।
2: ड्राइव द ड्रीम ओनली एट अबू सुधरा मॉल।
4: यू आर लिसनिंग टू कतार्स नंबर 1 रेडियो स्टेशन Radio Olive 106.3 FM Geo Bindas.

0: रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी।
1: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
2: लुलू, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: एपिसोडियों की तरीके अल्टर से त्रिया गाल सिमरन कौर है तोड़े नाल और आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं
1: तूने तो पल भर में चोर किया रे जिया मोरा जिया
0: दबंग फिल्म्स के बारे में थप्पड़ से डर नहीं लगता ऐसा है प्यार से लगता है। सोनाक्षी सिन्हा ने डेब्यू किया था इस फिल्म से और ये डायलॉग कितना ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। वो बुरा मान गए थे इसमें फूफा जी बन गए थे ओम पुरी जी इसलिए नाराज़ हो गए थे क्योंकि उनका कहना था कि उनके सीन्स काफ़ी ज़्यादा लेंदी थे लेकिन उनके सीन जो है वो काट दिए गए हैं। तो या ये भी हुआ था। मुझे लगता है कि शादी पे जाने पे ही नाराज़गी होती है शादी पे ही नाराज़गी होती है लेकिन यहाँ पे फिल्म के सीन काटने पे भी फूफा जी नाराज़ हो जाते हैं। सो या अगर बात करें सलमान खान एंड डिम्पल कपाड़िया की जो कि सलमान खान की मम्मी बनी थी लेकिन वो कुछ ही साल बड़ी हैं सलमान खान से बट उनकी मम्मी बनी थी है ना। उसके साथ साथ अगर इसके कास्ट मेंबर्स की बात करेंगे सलमान खान की जो फिल्म वांटेड थी उसमें भी महेश मांजरेकर विनोद खन्ना प्रकाश राज सीक्वल में है ना। सलमान खान ने दोनों फिल्म में कॉप का रोल निभाया था तो ये सारी चीज़ें सिमिलर थी दबंग फिल्म में। और भी बताऊँगी थोड़ा सा इंतज़ार कर लो और रहो मेरे साथ यार क्योंकि

और आज हम दबंग फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं। सो मलाइका जो थी वो उस टाइम पे सलमान खान की सिस्टर इन लॉ थी। उस टाइम पे उनकी फिल्म में उनकी सिस्टर इन लॉ का जो है वो डांस करना, वो आइटम सॉन्ग करना, सब लोग जो थे वो एकदम सरप्राइज रह गए थे। सो दबंग फिल्म जब शूट हुई और जो उसका फाइनल कट आया वो 4 घंटे का था। सो सलमान खान ने बाद में इसके लिए डेविड धवन को बुलाया, तो डेविड धवन सर ने इस फिल्म को ट्रिम किया और 2 घंटे की ऑलमोस्ट जो है उनकी हेल्प की वजह से ये फिल्म हुई थी। सलमान खान ने पहली बार आई गेस उनके फिल्मी करियर में मूछ जो थी वो लगाई थी, और ये उन्हीं का आइडिया था कि वो वैसा मूछ वाला जो है वो लुक रखते, काफी कूल लग रहे थे यार। और इस फिल्म में सलमान खान ने अपने डांस स्टेप्स किए थे जो कि हमको समझ लगती है सलमान खान के अपने ही डांस स्टेप्स हैं, और उनको किसी, मुझे लगता है कि कोरियो की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप से जो है वो कर लेते हैं। लेकिन सोनाक्षी सिन्हा का रोल सबसे पहले कैटरीना कैफ को जो था वो यू नो एक्सप्लेन किया गया था, नरेट किया गया था, लेकिन कैटरीना कैफ ने रिजेक्ट कर दिया था ये बोल के कि नहीं यार, मतलब ये उस रोल के लिए सूट नहीं करते हैं। लेकिन ये तो भाईजान का प्यार था ना, वो चाहते थे कि कैटरीना कैफ आए यार इसमें।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM. टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
1: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Dana Dal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Alkhor.
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे,
3: आरजे सिमरन के साथ।
4: Zabardast evening, make you drive golden with.
5: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: 7:40 हो चुके हैं और इट्स टाइम
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ।
0: क्या होता है कि अपनी लाइफ में ना हीलिंग जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और हमको लगता है कि जब हम किसी चीज़ से किसी दौर से गुजर रहे होते हैं और हीलिंग जो है हम चाहते हैं कि फटाफट से ये जो बोझ है ना अपने अंदर से वो हट जाए, वो जो एक एंजाइटी है वो चली जाए, ये जो पैल्पिटेशंस हैं वो निकल जाए, इसके लिए हर चीज़ का कहते हैं ना जैसे एक टाइम होता है इफ़ यू आर गोइंग थ्रू समथिंग यू नो। सो मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बताऊँगी कि एक दिन आप खुद ही नोटिस करेंगे कि ये जो वेट है ना आपके अंदर, जो सुबह आप उठते हो एक दिल पे एक बड़ा सा वेट रहता है और आप एकदम से सोचते हो, एकदम से आपको एंजाइटी जो है वो होने लग जाती है, एकदम से आपको कुछ हार्ट हैवी लगने लगता है या फिर यू नो आप शिविर करने लगते हो, तो ये चीज़ में बहुत सारा टाइम जो है वो लगता है। एकदम से ये चीज़ें नहीं होती है, बट व्हेन यू प्रैक्टिस दिस ना तो फिर कोई माई का लाल नहीं है कि आपको ये यू नो स्ट्रेस दे सके और फिर स्ट्रेस की वजह से आपको जो है वो इस तरह की सिचुएशन हो सके आपकी लाइफ में। लाइफ में अपने आप को ऐसा बना लीजिए कि फिर कोई आपको कभी परेशान ना कर पाए। सो या इतना सा मोटिवेशन आपके लिए काफी है या फिर और प्यार मेरा है यार वापस लौट के नेम गेम होगा।

0: टू
1: समझ पाऊ ना,
0: सब कुछ समझना जरूरी भी नहीं होता। 7:49 पंजाबी जगह 7:50 हो गए ने, स्टूडियो की घड़ी ते सिमरन कौर तुहाडे नाल है। दोस्त चलो जी, लेने वाली हूँ मैं अब आप सबके नाम। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम मैं अभी के अभी लूँ तो आप मुझे अभी के अभी अपना नाम बता दीजिए, मैं आपका नाम बोल दूंगी। नंबर मैं बता देती हूँ जहाँ पे आपको मुझे नाम लिख के व्हाट्सएप करना है, 3311063। जी हाँ, 3311063। इस नंबर पे सिर्फ और सिर्फ आप अपना नाम लिख के मुझे भेज दीजिए। चलिए अब मैं बोलना आप लोगों के नाम जो है वो स्टार्ट करती हूँ। मिराज, महबूब, अहमद, विनायक, रहमान, मोहम्मद, ओमन, योगिनी, संतोष, श्रवण खान, मोहम्मद, संधू, सतीश, डेन, जुहेब।

थैंक यू सो मच अल्ताफ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। रेनिता जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। एंड दैट्स इट फॉर नाउ। जिन जिन लोगों के नाम ले लिए बेटा थैंक यू, और आपका फेवरेट इमोजी तो बनता है। अगले घंटे एक चुटकी सॉन्ग खेलते हैं।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
1: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danadal Pahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Al Khor.
2: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਤਰ ਹਿੰਦੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੇਡੀਓ ਆਲਵ 106.3 FM ਜੀਓ ਬਿੰਦਾਸ।
0: ਆਲਿਵ ਸੁਨੋ ਰੇਡੀਓ ਨੈਟਵਰਕ ਕਤਰਸ ਨੰਬਰ 1 ਏਸ਼ੀਅਨ ਰੇਡੀਓ ਨੈਟਵਰਕ।
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
4: आरजे सिमरन के साथ।
5: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
6: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

हाँ जी बड़ा ही रोमांटिक गाना है यार। अभी मैं आपको थोड़ा सा एक चुटकी भर सॉन्ग सुनाने वाली हूँ, तो बताओ ये कौन सा गाना है।

से गाना शुरू हो जाता है। अब गाना आप बताइए कि अगर आप गेस कर पाएंगे तो जवाब देने के लिए वॉइस नोट ही रिकॉर्ड करना है, गाना गाना है, बता के बताना है, जैसे मर्जी, लेकिन वॉइस नोट भेजना है एकदम एनर्जी के साथ। हे सिमरन, अपना नाम बताइए और बताइए गाने के बारे में 3311063 पे आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। एक बार वापस से सुना रही हूँ।

0: नंबर याद है ना 3311063, भेजो फिर।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। बिंदास। अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार अलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में। फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए अलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए अलदार एक्सचेंज ऐप नाउ।
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
2: आरजे सिमरन के साथ।
3: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
4: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: म्यूजिक कितना मस्त है ना इसका जी। स्टूडियो की घड़ी पे हो चुकी है और हम खेल रहे हैं
1: रेडियो ऑलिव पर
2: बहुत बढ़िया
0: और एक चुटकी सॉन्ग है ये।

0: देखते हैं कितने लोगों ने पहचाना है।
1: जी
2: हेलो सिमरन जी।
1: हाय
2: मेरा नाम खालिद है
1: जी।
2: और जो गाने की म्यूजिक आपने सुनाई है वो है मेरे

0: जवाब दो।
1: कमाल यार,
0: दो ना।
1: अरे इसको भेजने के बाद प्रिंसन जी ने मुझे मैसेज किया, कहते कि प्लीज मैंने बिल्कुल अच्छा नहीं गाया, आप मत चलाइएगा। कितना प्यारा गाया है यार आपने।
2: द सॉन्ग इज मेरे रंग में रंगने वाली, फिल्म नेम इज मैंने प्यार किया। मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो परियों के रानी,

बात है यार, सबने एकदम सही जो है वो जवाब दिया। लिखने वाले जो हैं उनके लिए भी बोलूंगी, लेकिन आप लोगों को मैं अप्रिशिएट इतना नहीं करूंगी, क्योंकि जितने मैं अप्रिशिएट उन लोगों को करूंगी जिन्होंने मुझे यू नो वॉइस नोट्स जो है वो भेजे हैं। सो यार, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू आप सबके मैसेजेस के लिए। ब्रेक के उस पार

0: सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद
2: नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस कराफा।
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, गदर की नंबर वन आरजे
4: सिमरन के साथ।
5: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Just

0: नमस्कार, मैं हूँ गुलराज सिंह।
1: गुलराज सिंह
0: और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3।
1: जियो बिंदास।
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

प्यारा गाना है यार. जी दादी की हाल चाल सत श्री अकाल सिमरन कौर थोड़े नाल और सिमरन कौर की यहाँ से अब गलती मारने का टाइम आ चुका है. जाने से पहले शो के आखिरी दो गाने याद आएगी कि नहीं मेरी.

0: चलो बाकी की बातें आप कल करेंगे, ओवर थिंकिंग मत करना। कल शाम को 5 बजे आपसे मिलती हूँ, टिल देन खाने पीने रो ऐश कर दे रो, चेहरे दे बड़े वाली स्माइल रखो, किसी का दिल मत दुखाना, बी नाइस टू एवरीवन यार, गुड नाइट, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू 100 किलो।
1: रेडियो

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास टफ काम और भी आसान। कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
1: अब वो सिद्रा मॉल में आ गया है ड्राइव द ड्रीम। सिर्फ 100 रियाल खर्च करो, फ्री राफल कूपन पाओ और जीतो दो टोयोटा लैंड क्रूजर 20।

0: XR,
1: साथ में 1,00,000 रियाल कैश प्राइस और 10 आईफोन 18 प्रो मैक्स बर्गंडी भी।
0: ऑफर वैलिड टिल 16th मार्च 2027।
1: जल्दी आओ अबू सुधरा मॉल, कूपन लो और अपने ड्रीम कार जीतो।
0: ड्राइव द ड्रीम ओनली एट अबू सुधरा मॉल।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM जिया बिंदास सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM

भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव जियो बिन

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

मिलते हुए लब, एक शब्द हो तुम, कोई सच हो तुम, या उलझा हुआ ख्याल हो, फिलहाल तुम एक सवाल हो।

106.3 FM, Gio Bendaz.

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

106.3 FM. 106.3 Radio Olive. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है.

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। बिंदास। अब सुनिए

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।